ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है। अंकू से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। तो अंकों से दोस्ती कीजिए और सुनते हैं हम अगला गाना, 5 रुपया 12 आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा तू जाग जरा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर,

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देवर्मन का संगीत और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़ी मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना 5 पैसे का एक सिक्का और 1 पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, 6 पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार, 2 देखा गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूं क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो एक दर्द देना तो बनता है और वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

0: इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न मैं आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है। वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और ये जो अगला गीत है इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।
1: मौत!

मैं कर रही थी किसी काम

हम सुन रहे थे तेजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है। गीतकार हैं जावेद अख्तर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत। और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने दो, दस तोला, गोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारे श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं। और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

लता मंगेशकर की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आपके साथ फिल्म से आनंद बख्शी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी भाग लिया, जहां उन्होंने दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को संबोधित किया। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब से कुछ देर बाद भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। राज्य सरकार द्वारा माह नवंबर 2025 से इस मासिक आर्थिक सहायता राशि में 250 रुपए की बढ़ोतरी किए जाने के बाद से सभी पात्र हितग्राही महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपए की निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है। योजना की शुरुआत यानी जून 2023 से लेकर जून 2026 तक सरकार द्वारा कुल 37 किश्तों का नियमित अंतरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में 238,96,00,000 रुपए की लागत से पूर्ण हो चुके 40 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर बीएसएफ परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आयोजित पौधारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। अभियान के अंतर्गत 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना की जाएगी। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने सहभागिता की। यह महाअभियान पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जल संवर्धन को जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पौधारोपण के साथ 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापित कर वर्षा जल के संरक्षण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नागरिकों से इस महाअभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया।
1: एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान प्रारंभ किया है, हमारे अपने इंदौर में 30 लाख पौधों का जो संकल्प था, आज इस 1 लाख पौधे लगाने का जो प्रण था, आज इसका 51,000 पौधे तो इस बीएसएफ कैंपस में लग रहे हैं। जल है तो जीवन है, ऐसे हमारे पेड़ के साथ हमारा जो संबंध है, प्रकृति का संबंध, ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आधार पर है। और खासकर वर्तमान के समय में प्रदूषण और सभी बातों का निवारण एकमात्र वृक्षारोपण पे ही जाकर दिख रहा है। मेरी
0: ई प्रवेश अभियान में अब तक से प्रदेश में 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,206 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटीई पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब खबर मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कुछ समाचार संक्षेप में। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने झाबुआ के टोटला में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत नर्मदापुरम जिले के शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी में आयोजित पिंक लाइसेंस ड्राइव में करीब 80 छात्राओं ने निशुल्क लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमेरिकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की एमनेस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
6: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
7: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना म्लादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा देवदास फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

मैया लहकी मृदंग धनका झट झट झट झट नागिन तेज तेज सगन नदादा किट झट झट झट झड़न झट झट सगन का किट झट झट सगन का झट सगन नदा साधा झट झट सगन का साधा सगन का।

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
3: कहीं बेख्याल हो कहीं किसी ने।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
4: जाने
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहेगी,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400

मनचाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ, जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं। बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने। ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया, उसी पोस्ट कार्ड, उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं। ढेर सारी आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद।

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं। गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चौपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्टकार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।

किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए। इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड प्लेयर? रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओह जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया। वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो, ये अच्छी छुट्टियां बिताने आए हैं आप दोनों मियां बीबी नैनीताल। एक पूरब को जाता है, दूसरा पश्चिम को। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं। जरा कपड़े बदल लो, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों, आप क्यों? ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी हैं मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलॉसफी की क्लास मत शुरू कीजिए। वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर श्रृंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो, मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटा।

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने। अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती
0: है। कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ, नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जान आ, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी है यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।

0: बात मानिए जीजा जी।
1: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मजा आ गया।
1: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
1: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
1: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओ, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
1: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
1: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
1: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, क्या आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
1: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना।

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहां से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। भाई, इस गुनगुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानते हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो। भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविताबाजी में बात करना अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं, हम बस सीधे साधे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो, मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है, पर मैं पूछती हूँ क्यों?

0: घूमने नहीं चल सकते क्या?
1: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
0: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
1: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हो, ये क्या बात हुई? मैं तो हूँ ही पहाड़न, पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़।
0: और नहीं तो क्या, जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्हें कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूं मैं क्या करूं, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: तो डल, इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़का कर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।

0: पीछे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि ये अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करो मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप। मेरे किए क्या हो सकता है, और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं।
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
0: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
1: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
0: जमती थी? पता नहीं।
1: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
0: पूछिए।
1: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
0: जी।
1: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
0: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
1: अगर बर्फ पिघल कर धरती में जज्ब हो जाए तो?
0: रोज रोज कहाँ होता है ऐसा, बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी। कई बरस हो गए उस बात को, अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार वो अकेले

0: लीजिए मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय, सच कहो मीनाक्षी, अगर तू ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहाँ है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाओ?
1: अरे नहीं, नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू, फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख ले तो अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान, कब हुआ?
1: देख पल्लू, तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा, तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका?
1: लड़का है।
0: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय, भाई है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है कि सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है?
1: देख कर बताना।
0: अरे यार, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है, नहीं?
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पाँव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो, पल्लवी की तरह पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो उसे भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसी हुई, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले है नहीं।
1: अपना अपना नजरिया है, मैं तो समझती हूँ आने वाले कल को खुशनुमा बनाना हो तो आज थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ती है।
2: अरे रहने दे यार अपनी ये फिलोसफी हानि, तो भूख आज लगी है और तू कहती है रोटी कल खाएंगे।
1: तुझे क्या पता, एक दिन उपवास रखो तो अगले दिन खाना खाने में ज्यादा मजा आता है।
2: छोड़ना यार ये बुढ़ियों वाली व्रत उपवास की बातें, आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग। इन्हीं बातों ने ना तुझे मरगिल्ली बना रखा है। देख देख देख, मेरे जैसी जिंदा दिल होती ना तो किताबों में आंखें गढ़ा कर चश्मे का नंबर बढ़ाने की बजाय रोज शाम को किसी बॉयफ्रेंड के साथ डिस्को में डांस करती हुई नजर आती।
1: ना बाबा ना, ये सब ना मुझे अच्छा लगता है और ना ही शेखर को।
2: शेखर को?

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ मुझे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब सब अजंता एलोरा जाना चाहते।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वो ही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: ये नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं, कभी नहीं। ठूठ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा?

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती। उजाले

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं सदाशिव।

0: अमरापुर कर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था, क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
1: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
0: सजा।
1: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूँ, अगर मैं जो कहता हूँ, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूँ, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहालय के ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो, सत्यमेव जयते में बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
0: बिल्कुल,
1: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे, ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था, वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की उसकी वजह से वो बदल पा रहे थे।
0: बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
1: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
0: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
1: यस,
0: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुर करके रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं। सो, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात
1: बहुत
0: मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे।
1: करेक्ट।
0: और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: और
0: काम,
1: उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा
0: जी।
1: ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व्ड थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर, तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। सो, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार, पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिले वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागले जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
0: विरोध करेगा,
1: जो विरोध करेगा या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा, ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
0: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
1: करेक्ट। सो, पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
0: गजब।
1: हालांकि उन्होंने उसके लिए

0: से भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे पैसे,
0: वो हाँ बेच कर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त माड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे माड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है,
0: आज भी मौजूद है, और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारियां आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा। बिकॉज जैसा मैंने कहा, वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल,
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन है,
0: बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे कमजोर होती गई, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रैजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते अगर
1: बिल्कुल
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है, इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी, जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी, सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे धीरे धीरे वीक होता जाता है, तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वकील लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो, ओके। या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूँ मैं, तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो,
0: और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल।
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन, ही इज द ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री, और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं।
0: Exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए और लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय,
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुकी नहीं रही थी। अल्टीमेटली 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी बस अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए,
0: दूर दूर से आए थे। और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर 1-2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली। और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वाज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने कहीं पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल।
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ इसीलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: जी उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताजा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना और ग्रेजुएट होना, उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50 टका हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे, हमारा खेत भी था उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
2: सब कुछ होता था। सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे, तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे

0: तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ, और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा यह इंसान, यह आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे, तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी, उसके पीछे आज भी चर्च है, तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं, और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द-गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है, लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है, और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी। उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई ये गीत हम क्यों ना सुन ले?
0: जी जी, जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: और उसके बोल है, मेरे दिल में है एक बात।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे
1: जी,
0: तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और घर दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है, वो प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं, नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-20 25-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था, क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछड़े हुए जाति के लोग
0: थे। तो वो पलट के नहीं देखती थी?
1: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया, हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
0: आ तो गई। गीत सुन लेते हैं
1: जी।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी।

0: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुगबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
1: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ, लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
0: जी।
1: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मैं मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूँ तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले, एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
0: वाह।
1: तो

0: मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी, और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ा इज्जत थी नया होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाए किसी होटल में, चाय पीने जाए, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था, साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो,
1: लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत पुरानी, गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी, जी।

तो ये सदाशिव जी की आवाज देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें

0: रह जाती हैं और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या है आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हूँ, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूँ कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूँ वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूँ कि ये आज़ादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुँचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूँ कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफ़ी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूँगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपके, कोई मीम हो या कोई रील हो, कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था, जब आपके सामने करियर का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोखले इंस्टीट्यूट से, तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट। पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशुमान देखी अकीरा कुरोसावा की, और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए। मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छप के आएगा, खत्म, ऐसा कुछ करना चाहिए। और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था। मैंने कहा हाँ करना था, लेकिन अभी मुझे ये करना है। तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले। सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी। क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गया कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे। तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी। ओके
0: राइट।
1: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है, फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है। फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना। पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है, तो मैं एनजीओस के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ।
0: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था, तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है। तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए।
1: थैंक यू सो मच। ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं, पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस।
0: थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भिंड जिले के लहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1,25,15,000 से अधिक बहनों के खातों में 38वीं किश्त 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में वृक्ष मृत और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 21 लाख पौधों का रोपण एवं 51,000 वर्षा जल संचयन यूनिट स्थापना के महाअभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के संकल्प को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के विकास का अगला चरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और उन्नत बुनियादी ढांचे पर आधारित होगा। इसके लिए नैसकॉम के सहयोग से व्यापक AI पाठ्यक्रम तैयार किया जा चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश का दौर रहेगा। आज प्रदेश के 27 जिलों में बारिश होने का अनुमान है और फीफा विश्व कप 2026 का पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को स्पेन और फ्रांस के बीच होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल के विजेता 20 जुलाई को आमने सामने होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: नमस्कार श्रोताओं, आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मानवी श्रीवास्तव। आइए साथियों, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के महत्वपूर्ण विषय। दोस्तों, आज की बात का हमारा आज का विषय रहेगा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस उपलक्ष्य में। साथ ही चर्चा करेंगे वर्ल्ड पेपर बैग डे पर। जीवन आलोक में बात करेंगे कर्मठ बने आलस्य का परित्याग करें। साथ ही क्रम वार्ता के अंतर्गत जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। विषय रहेगा सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें। इसकी वार्ताकार होंगी प्रज्ञा गौतम और इस सफर में सुनेंगे कुछ मधुर गीत। साथियों, आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जहां चाह है वह राह है। कई महान विचारकों का मानना है कि आशा एक ऐसी शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। विषम परिस्थितियों में भी उम्मीद नहीं छोड़ना और उम्मीद बनाए रखना ही हमारे जीवन में तथा समाज में बड़े बदलाव का कारण बनता है। दोस्तों, आशा जीवन का यह शक्तिशाली प्रकाश है जो घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। हमारे जीवन में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना होता है, लेकिन आशा एक उम्मीद जो हमारे मन में जागृत होती है, उसकी डोर से हम जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इसी भावना को वैश्विक स्तर पर मान्यता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में नामित किया गया है। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद का एक छोटा सा दीपक हमेशा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। साथियों, इसी विषय पर एक सुंदर सी कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। चाहे कितनी धुंध पड़ी हो, किंतु अंत में छट ही जाती। गहन कालिमा निवर निशा की, प्रातः को कब है रह पाती। चले आंधियां भले भयंकर, पर्वत लेकिन अविचल रहता। पथ की सब बाधाएं सहकर, जल नदियों का आगे बहता। फिर पाकर हम थोड़ा सा दुख, इस जीवन से क्यों घबराएं। तूफानों से हार न माने, आशाओं के दीप जलाएं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति निराशा या डिप्रेशन में होता है, तो आशा ही उसे जीवन जीने का नया कारण देती है। सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस का थीम आशा की शक्ति एक उज्जवल और एकजुट भविष्य का निर्माण है। साथियों, आशा हमें हर परिस्थिति में दृढ़ एवं आत्मविश्वासी रहने में मदद करती है। आशावादी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देता है, जो उसे औरों से अच्छा काम करने, अच्छा सोचने एवं आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में सहायक होता है। आशा एक ऐसी सकारात्मक शक्ति है जो जीवन की गाड़ी को मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ाती है। आशा बेहतर भविष्य की कल्पना और उसे पाने का अटूट विश्वास है। बिना उम्मीद के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह एक दीपक के समान है जो जीवन के कठिन रास्तों पर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि उम्मीद और विश्वास पर दुनिया कायम है। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण दिवस अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व पेपर बैग दिवस पर। दोस्तों, प्लास्टिक बैग इस समय सभी देशों के लिए चिंता का विषय है। प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, साथ ही ये बैग हमारे सेहत के लिए भी खतरनाक है। प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग का इस्तेमाल हमारे और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होगा। साथियों, प्लास्टिक को नष्ट होने में हजारों साल लगते हैं, जबकि पेपर बैग जैविक रूप से बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पेपर बैग का उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पेपर बैग के उपयोग के महत्व को समझकर उसका उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। साथियों, पेपर बैग की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में देखी गई थी, जब फ्रांसीसी बोले द्वारा 1852 में पहली बार पेपर बैग मशीन का आविष्कार किया गया। इस आविष्कार ने पेपर बैग के उत्पादन में क्रांति ला दी, जिससे पैकेजिंग समाधान के रूप में पेपर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा। कागज के बैग लोगों के बीच काफी लोकप्रिय विकल्प बन रहे हैं। ये बैग पर्यावरण के लिए उपयुक्त हैं और प्लास्टिक बैग द्वारा उत्पादित प्रदूषण की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। द वर्ल्ड काउंट्स के अनुसार हर साल अनुमानित 100 मिलियन टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। यह एक समस्याग्रस्त संख्या है, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा है। लैंडफिल में प्लास्टिक को टूटने में सैकड़ों साल लग सकते हैं और यह वन्य जीवों को काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। पेपर बैग पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से विघटित होते हैं और इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है। इन्हें संधारणीय स्रोतों से तैयार किया जाता है और इन्हें आसानी से रिसाइकल या त्यागा जा सकता है। आज के इस दिवस पर आइए हम संकल्प लें कि प्लास्टिक का उपयोग त्याग कर पेपर बैग्स का इस्तेमाल करेंगे। साथियों, समय है एक महत्वपूर्ण वार्ता सुनने का, जिसका विषय है सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। इसकी वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: नमस्कार साथियों, आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों, सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है, जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों, सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों, आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में

0: शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीजें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों, कई बार तो यूजर को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों के वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जन साधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है। किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानी पूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से, हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूंगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रहित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: साथियों, सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें, इस विषय पर अभी आपने वार्ता सुनी। इसकी वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं जीवन आलोक की, जिसमें हमारा आज का विषय है कर्मठ बने, आलस का परित्याग करें। साथियों, मनुष्य के जीवन में सफलता का सबसे बड़ा आधार कर्मठता है। कर्मठ व्यक्ति अपने कार्य को पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी से करता है। इसके विपरीत आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी व्यक्ति अपने कार्यों को टालता रहता है, जिससे उसके जीवन में असफलता, निराशा और पछतावा पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्मठ बनने और आलस्य का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। दोस्तों, कर्मठता व्यक्ति को अनुशासित, आत्मनिर्भर और सफल बनाती है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है और नियमित रूप से अपने कार्य करता है, वह जीवन में अवश्य प्रगति करता है। विद्यार्थी यदि कर्मठ हो तो वह पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, शिक्षक और सैनिक सभी अपनी कर्मठता के कारण समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देते हैं। आलस्य व्यक्ति की प्रतिभा को नष्ट कर देता है। आलसी व्यक्ति समय पर कार्य नहीं करता, जिससे उसके अवसर हाथ से निकल जाते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है और वह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। आलस्य स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इससे शरीर में सुस्ती, मोटापा और अनेक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। कर्मठ बनने के लिए हमें प्रतिदिन समय पर उठना, नियमित दिनचर्या अपनाना, अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। अच्छे लोगों की संगति, सकारात्मक सोच और आत्म अनुशासन भी कर्मठता को बढ़ावा देते हैं। विद्यार्थी जीवन में कर्मठता का विशेष महत्व है। यदि विद्यार्थी नियमित अध्ययन करें

समय का सदुपयोग करें और आलस्य से दूर रहें, तो वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का परिश्रम ही उज्जवल भविष्य की नींव होती है। कर्मठता सफलता की कुंजी है और आलस्य असफलता का मुख्य कारण। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना मित्र और आलस्य को अपना शत्रु बनाता है, वही जीवन में सम्मान, सफलता और सुख प्राप्त करता है। इसीलिए हमें सदैव कर्मठ बनने, समय का सम्मान करने का संकल्प लेना चाहिए। यही व्यक्तिगत उन्नति, समाज की प्रगति और राष्ट्र के विकास का सबसे सशक्त मार्ग है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं यह गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म चलते चलते से। इस गीत को अपनी आवाज दी है अभिजीत और साथियों ने।

अभी आपने सुना ही है खूबसूरत सा गीत फिल्म चलते चलते से। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए अपने दोस्त मानवी श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ।

0: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है,
1: मैं सागर हूँ।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाए अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
0: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी। आइए जानते हैं जानी मानी पर्यावरणविद और समाज सेविका डॉक्टर वंदना गुप्ता के विचार।
5: आकाशवाणी सागर के सभी सम्मानित श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति केवल

0: हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि और हरियाली ये केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हमारे स्वस्थ और सुखी जीवन की अमूल्य धरोहर हैं। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, घटते वन क्षेत्र और बढ़ते प्रदूषण ने आज पर्यावरण संरक्षण को केवल एक अभियान नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बना दिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का कार्य केवल सरकार या प्रशासन का है, जबकि वास्तविकता यह है कि यदि प्रत्येक नागरिक छोटा सा संकल्प ले ले तो पूरा शहर बदल सकता है। मैं सागर शहर के प्रत्येक परिवार से आग्रह करना चाहती हूँ कि हर घर, हर छत हरित अभियान को अपना जन आंदोलन बनाए। जिनके पास अपनी छत है, वे कम से कम 10 से 20 गमलों या ग्रो बैग में धनिया, मेथी, पालक, टमाटर आदि बेल वाली सब्जियां और औषधीय पौधे उगाएं। इससे न केवल घर की ताजी और रसायन मुक्त सब्जियां मिलेंगी, बल्कि घर का वातावरण भी हरा भरा और शुद्ध बनेगा। इसी प्रकार हमारे घरों से प्रतिदिन निकलने वाली सब्जियां और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन तथा चाय की पत्ती कचरा नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट जैविक खाद का स्रोत है। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, ये मेरा 30 साल का अनुभव कह रहा है। जो हम प्रतिदिन करते हैं, ये हमारी छत पे इस तरह का हमने बना रखा है, और उसमें आप यकीन मानिए कि जो भी बीज सब्जी सब डालते अपने आप, कभी पपीता निकल आता है और हम ढेर सारे पपीते खाते हैं, कभी बड़े बड़े कुम्भों की बेलें निकल आती हैं, हम अलग से लगाते भी नहीं, उसी के अंदर हमने सब डंप किया और उसी में से वो हमको निकल के मिल भी जाता है। बड़ा ही सुखद अनुभूति होती है। यदि प्रत्येक घर में कंपोस्ट बनाया जाए तो नगर निगम पर कचरे का भार भी कम होगा और पौधों के लिए प्राकृतिक खाद भी सहज उपलब्ध होगी। आज स्थान की कमी कोई बाधा नहीं है। सीमित जगह में भी ग्रो बैग, वर्टिकल गार्डन और हैंगिंग पॉट के माध्यम से सुंदर हरित उद्यान तैयार किए जा सकते हैं। बेल वाली सब्जियां दीवारों पर आसानी से उगाई जा सकती हैं, वो चढ़ जाती हैं उस पर बेलें। आवश्यकता केवल एक छोटे से प्रयास की है, और मुझे विश्वास है सागर के लोग निश्चित रूप से ये प्रयास करने में सक्षम है। मैं नगर प्रशासन से भी आग्रह करती हूँ कि प्रत्येक वार्ड में एक घर एक कंपोस्ट यूनिट अभियान चलाया जाए तथा नागरिकों को प्रशिक्षण और कम लागत वाली कंपोस्ट इकाइयां उपलब्ध कराई जाएं। विकास आवश्यक है, लेकिन विकास और पर्यावरण साथ साथ चलें। सड़क निर्माण या अन्य विकास कार्यों में पेड़ों की कटाई अंतिम विकल्प हो। जहां संभव हो, वैज्ञानिक तरीके से वृक्षों का ट्रांसप्लांट किया जाए, स्थानांतरित किया जाए तथा प्रत्येक जिले में ट्री ट्रांसप्लांट सेल स्थापित हो, जो प्रत्यारोपित वृक्षों का रिकॉर्ड रखे और उनकी नियमित निगरानी करे। हमें यह भी समझना होगा कि केवल पौधारोपण पर्याप्त नहीं है। असली सफलता तब है जब लगाया गया पौधा वर्षों तक जीवित रहे। इसलिए पौधरोपण नहीं, पौध संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रत्येक पौधे की कम से कम 3 वर्षों तक देखभाल की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस अभियान में विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला मंडलों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और कॉलोनियों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक नागरिक मेरा पौधा मेरी जिम्मेदारी का संकल्प ले ले तो सागर शहर शीघ्र ही हरियाली की नई पहचान बन सकता है। वैसे भी प्राकृतिक रूप से छोटी छोटी पहाड़ियों से युक्त सागर, जब कोई आता है मेहमान तो वो मनमोहित हो जाता है। हम अपने सागर को और अच्छा बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। साथ ही वर्षा जल संचयन को प्रत्येक भवन का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, रूफ गार्डन और हरित बालकनी को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे शहर का तापमान कम हो, जैव विविधता बढ़े और हमारा परिवेश अधिक सुखद बने। जो परिवार, विद्यालय या संस्थान उत्कृष्ट हरित परिसर विकसित करें, उन्हें प्रशासन द्वारा सम्मानित और प्रोत्साहित किया जाए। सम्मान प्रेरणा देता है, आगे और अच्छा करने का उत्साह भरता है और लोगों के मन में प्रेरणा से समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। प्रिय नागरिकों, पर्यावरण संरक्षण केवल लाखों पौधे लगाने से ही नहीं होगा। वास्तविक परिवर्तन तब आएगा जब प्रत्येक घर हरित बनेगा, प्रत्येक परिवार जैविक खाद बनाएगा, प्रत्येक छत पर पौधे लगाएंगे और प्रत्येक नागरिक कम से कम एक वृक्ष के संरक्षण का संकल्प लेगा। घर के अंदर के वातावरण को बहुत अच्छा हम बना सकते हैं। कई ऐसे पौधे हैं साधारण रूप से जो हमको मिल जाते हैं, मनी प्लांट है और भी बहुत से पौधे, इसको हम लगाएं तो ये हमारे वातावरण को, हमारे बंद घर, आजकल खुले घर नहीं है, कमरों में लगाएं तो ये उसको शुद्धिकरण प्रदान करता है और हम सब के स्वास्थ्य पे सीधा असर डालता है। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि सागर को केवल स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि ग्रीन सिटी भी बनाएंगे। ऐसा शहर जहां स्वच्छ हवा हो, हरियाली हो, जल संरक्षण हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण हो। याद रखिए, एक पौधा लगाना प्रकृति से प्रेम है, लेकिन एक पौधे को जीवित रखना भविष्य की रक्षा है। इसी संदेश के साथ आप सभी से आग्रह है कि आज ही अपने घर, अपनी छत और अपने आसपास हरियाली बढ़ाने का संकल्प लें, अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आकाशवाणी सागर के समस्त श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम।
1: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है। इसकी और भी कहानियों को समेटकर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
2: और नासिर को।
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
1: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
3: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
1: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
2: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
4: अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीतों और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सोनू निगम के गायक चंद गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गीत।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
0: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से गीत और गजलों का कार्यक्रम संगीत सरिता, और आज आप सुन रहे हैं सोनू निगम के गाए कुछ गीत।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही संगीत सरिता का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 6 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी को फिल्म दुल्हन एक रात की में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है मदन मोहन का।

और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले को फिल्म लोफर में। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए स्वरचित काव्य पाठ। रचनाकार हैं दीपक कुमार राय।
1: पहली कविता का शीर्षक है रिमझिम रिमझिम। इस कविता के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि यह वर्षा ऋतु से पहले का भाव है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्षा केवल ऋतु नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य के बीच संवाद का सबसे कोमल माध्यम है। पहली फुहार के आने से पहले की प्रतीक्षा और आशाएं मिलकर एक अद्भुत भावलोक रचते हैं। मेरी कविता में वर्षा के आगमन से पूर्व की मनस्थितियों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। यह कविता बताती है कि प्रतीक्षा का भी अपना सौंदर्य होता है और पहली बूंद केवल धरती को ही नहीं मनुष्य के अंतर्मन को भी भिगो देती है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता रिमझिम रिमझिम। आकाश सजल है मानो अपने अंतस में समाये बैठा है अंतहीन आशा। हल्की कपकपी से युक्त पवन पेड़ों के पत्तों पर रह रहकर उतर रही है। धरती चुप है मानो नमी में गहरा विश्वास है उसका। या तो लंबे मौन की कड़ियां बिखरेंगी या फिर बादल बरसेंगे घनघोर। गायें लौट आई हैं अपने खलियान और खेत की मेड़ पर बैठे किसान की नज़र अब भी टिकी है क्षितिज पार, जहां नीले में काला रंग घुलने लगा है। वह जानता है बरखा कोई चमत्कार नहीं, पर हर बार वह चमत्कार ही लगती है। बीजों में छिपा जीवन जागने को मचलता है और हल्का फाल पहली बूंद के साथ मुस्कुराता है। गृहिणी ने आंगन में दीप जला रखा है, वह जानती है जल्द ही यह दीपक हवा से भीग जाएगा, पर प्रतीक्षा भी तो पूजा ही है। उसके हाथों की मेहंदी सूख रही है धीरे धीरे। मोर की आवाज़ अचानक आकाश को चीर देती है, जैसे मन की गहराइयों से अर्थहीन खुशियां फूट पड़ी हों चहुं ओर। नवयुवक खिड़की पर झुका है, वह सोचता है क्या प्रेम ऐसे ही आता है, मानो संपूर्ण अस्तित्व ही भीग जाता है तर बतर। सब कुछ वैसा ही है फिर भी सब कुछ नया सा, मानो जीवन ने अभी अभी अपनी पहली कविता कही हो धीमे धीमे हौले से। मेरी अगली कविता का शीर्षक है छूले आकाश। जैसा कि हम जानते हैं, आज का किशोर अनेक संभावनाओं से भरपूर होकर भी आभासी दुनिया के आकर्षण में अपने वास्तविक लक्ष्य से भटकता जा रहा है। मोबाइल स्क्रीन की चकाचौंध उसके सपनों को धुंधला रही है। मेरी कविता युवाओं को आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य और परिश्रम का संदेश देती है। साथ ही साथ यह प्रेरणा देती है कि यदि एक बार साहसपूर्वक युवा अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा दें तो सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमती है। तो प्रस्तुत कविता छूले आकाश। जिंदगी धुआं धुआं उलझा ही रह जाएगा, जिंदगी धुआं धुआं उलझा ही रह जाएगा, एक बारी छूले आकाश धुंधल का छट जाएगा। कर जतन हो मगन धैर्य से फतह तक, कर जतन हो मगन धैर्य से फतह तक, के जुनून धर मौका दोबारा न पाएगा। ख्वाहिशें लाख हैं फरमाइशें खाक कर, रौंद तू शौक को फिर आंख मौज से, के जीत ही जाएगा। जिंदगी धुआं धुआं उलझा ही रह जाएगा, एक बारी छूले आकाश धुंधल का छट जाएगा। अगली कविता का शीर्षक है वो। यह कविता एक स्त्री के जीवन पर आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक स्त्री का जीवन केवल घर के कामों तक सीमित नहीं होता। उसके संघर्ष में उसके सपने, त्याग, प्रेम और अपार संवेदनाएं भी शामिल होती हैं। वह परिवार के लिए जीते जी अपने अनेक अरमानों को मौन में समेट लेती है। प्रस्तुत कविता हर उस स्त्री को समर्पित है जो अपने श्रम, ममता और सहनशीलता से एक परिवार ही नहीं पूरे समाज की नींव को मजबूत बनाती है। तो प्रस्तुत है कविता जिसका शीर्षक है वो चूल्हे पर पकाती दाल, ख्वाब, हसरत और जिंदगानी, घायल हथेली से रगड़ती कपड़े, संतराश, आवेग और जज्बात रूहानी, वो गर्म राख से मांसती बर्तन, खुशियां, एहसास और मासूम नादानी, सहलाती टूटी फूटी तकदीर, कोख, गोद और बिलकती किलकारी। अगली कविता जिसका शीर्षक है समय की तकली। समय निरंतर गतिमान है, वह किसी के लिए नहीं रुकता, केवल अपनी धुरी पर घूमता हुआ जीवन के धागे बुनता चलता है। तकली की भांति वह हर पल नए अनुभवों और नई स्मृतियों का ताना बाना तैयार करता है। प्रस्तुत कविता समय की गति, जीवन की क्षणभंगुरता और आशा निराशा के द्वंद को अत्यंत मार्मिक रूप से अभिव्यक्त करती है। तो पेश है कविता समय की तकली। फिर आई शाम की तन्हाई के पल पल समय की तकली, फिरकनी सी थिरक रही, बढ़ रही तारीखें कि एक दुनिया उदास, दूजी दमक रही, कुछ न सोच कर भी दिले नादान मुस्कुरा रहा, ना मालूम क्यों। चलो चलें कि कारवां जिंदगी का झूमता गाता चल पड़ा, क्षितिज पर दमकती आभाएं, रोशन फिजाएं मुस्कुराती हैं, मगर फिर भी बंद मुट्ठी से समय बदस्तूर फिसल रहा, ना मालूम क्यों। अगली कविता का शीर्षक है पारिजात। प्रेम की अनुभूति किसी एक भावना तक सीमित नहीं होती, प्रेम में प्रकृति का प्रत्येक फूल एक नया अर्थ ग्रहण कर लेता है। प्रस्तुत कविता प्रेम की उसी सुगंधित यात्रा का काव्यात्मक चित्रण है, जहां स्मृतियां, सपने और सौंदर्य एक होकर जीवन को मधुर बना देते हैं। तो प्रस्तुत है कविता पारिजात। कभी चंपा कभी बेला, जन्नत सी बगिया बहारें, कभी चंपा कभी बेला, जन्नत सी बगिया बहारें, रजनी गंधा जैसे भीगे भीगे एहसास, जज्बात हमारे तुम्हारे, कुछ तुम पर कुछ हम पर चढ़े रंग निराले, कौमुदी शुरू इश्क के सिलसिले हमारे, फूलों सी खुशबू कभी मन पर तन पर जेहन में हमारे, खुली आँखों में सपनों में पारिजात से नजर तुम आते। अगली कविता का शीर्षक है यादों का मुरब्बा। बचपन की स्मृतियां समय के मर्तबान में रखे उस मुरब्बे की तरह होती हैं, जिसकी मिठास उम्र के साथ और गहरी होती जाती है। गांव की पगडंडियां, खेल, त्योहार, दोस्त, मंदिर की घंटियां और मस्जिद की अजान, ये सब मिलकर उस सांझी संस्कृति की तस्वीर बनाते हैं, जिसे आज भी याद करके मन भीग उठता है। तो प्रस्तुत है कविता यादों का मुरब्बा। बचपन की यादें महुआ की छाँव, पहाड़ी की ओट में बसता था गाँव, टेसू की डाली हुरियारे अरमान, लिपे पुते अंगना खड़े पेड़ मचान, खट्टी मीठी यादें मुरब्बा मर्तबान, साइकिल के टायर दौड़ाते नंगे पाँव, चाय की सुड़की डबल रोटी पाव, फुल्की पीते हर शाम, मंदिर में घंटी मस्जिद की रमजान, चौपाई रामायण, छोटी थी बस्ती दरिया बागान, भौरा और गुपनी थे खेल के मैदान, बचपन की यादें महुआ की छाँव, पहाड़ी की ओट में बसता था गांव। अगली कविता का शीर्षक है कोई नदी चलें। हमारी भागती दौड़ती शहरी जिंदगी में मन अक्सर प्रकृति की गोद में लौटने की चाह रखता है। गाँव की सादगी, चारों ओर फैली हरियाली, पगडंडियों का अपनापन और नदियों का प्रवाह मन को एक नई शांति प्रदान करता है। कविता में उसी सहज जीवन की ओर लौटने का निमंत्रण है, जहां नाटकीयता नहीं बल्कि प्रकृति और मनुष्य का आत्मिक बंधन दिखाई देता है। तो प्रस्तुत है कविता कोई नदी चलें। शहर से दूर चलो चलें, मेला ठेला कोई गांव चलें, नीला अंबर पंछी पोखर, अगड़म दगड़म कोई नदी चले, तीतर मोर पगदंडी के रस्ते, खेत खलिहान कोई नहर चले, भीड़ भड़क का शोर शराबे,

0: शहरी जीवन चलो छोड़ चलें, चिल्लम चिल्ली यह कैसी दिल्ली, दूषित जमुना हरिद्वार चलें, शहर से दूर चलो चलें, मेला ठेला कोई गांव चलें। और अंतिम कविता का शीर्षक है वक्त के सफहों पर। समय बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कभी पुराना नहीं होता। वह पुराने खतों, यादों, प्रतीक्षाओं और धड़कनों में जीवित रहता है। प्रेम की सुगंध समय के पन्नों पर अमिट इबारत की तरह अंकित रहती है। मेरी कविता प्रेम का उत्सव है, जो लैला मजनू की कथाओं से लेकर आज के मनुष्य के हृदय तक निरंतर स्पंदित होती रहती है। तो प्रस्तुत कविता वक्त के सफहों पर। वक्त के सफहों पर जाने कौन इबारत लिखी है, वक्त के सफहों पर जाने कौन इबारत लिखी है, इश्क के तलबगारों की धड़कने धड़कती अब भी हैं। मोहब्बत की तासीर तुम अगर समझो, मोहब्बत की तासीर तुम अगर समझो, तो पुराने खतों में जज्बातों की जुबा कुछ कहती अब भी है। सुर्ख थे बेरंग गुलाब जमाने में अपने, सुर्ख थे बेरंग गुलाब जमाने में अपने, खुशबू इश्क की उनमें गमकती अब भी है। लैला मजनू के जज्बात लगते होंगे अफसाने तुमको, लैला मजनू के जज्बात लगते होंगे अफसाने तुमको, यकीन मानो रूहें उनकी मोहब्बत का पैगाम लिखती अब भी हैं। वक्त के सफहों पर जाने कौन इबारत लिखी है, इश्क के तलबगारों की धड़कने धड़कती अब भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वरचित काव्य पाठ, रचनाकार थे दीपक कुमार राय। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर नंबर।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म ज्वेल थीप में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत है आनंद बख्शी का और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: सो योर प्लेस और माइन।
1: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
0: कॉन्डम? लेकिन हम तो
1: क्या हुआ? ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन

0: व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से फिल्में गीतों का कार्यक्रम सदाबहार की, और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक बार फिर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को ही फिल्म इश्क पर जोर नहीं में। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत है सचिन देव बर्मन का।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इसमें आप सुनेंगे देशराज पटेलिया के गाए कुछ लोकगीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये लोक भजन।

0: नौकरी लग गई।
1: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
2: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
2: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
2: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
1: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग, और लीजिए अब सुनिए देशराज पटेरिया से ही ये दादरा।

देशराज पटेरिया के गए इस लोकगीत के साथ ही लोकरंग का कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है। भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि ये अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वे इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने बताया है कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के अंतर्गत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी के आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल में चीन की गुओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलाडोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रियला डाब्रोव्स्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी से जारी है। हान्यू और मलाडोनोविक ने पहला सेट 6-3 से जीत लिया है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर स्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शाम के ठीक 7:05 हुए हैं। आइए हम आपको हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रम की रूपरेखा दे दें। अब से थोड़ी देर बाद शाम 7:20 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। 7:30 पर ग्राम सभा कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर डगर विकास के कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये आकाशवाणी गुना का योगदान होगा और इसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। 9:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत।

ओली जी, आप सुनिए हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रम। कल सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा अर्चना। 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा मन्ना डे और शोभा जोशी का। भूले बिसरे गीत आप सुन सकते हैं सुबह 6:40 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनेंगे कल सुबह 7:00। 7:05 पर कृषि संकेत कार्यक्रम में आप सुनेंगे रासायनिक दवाओं के उपयोग में विशेषज्ञों की सलाह का महत्व। इस विशेष विषय पर ये चर्चा, विशेषज्ञ होंगे विपिन जैन। 7:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहेगी। 7:45 पर गीतों और गजलों का कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। 8:15 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक संगीत। 8:30 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा बिंदिया। कल सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने। 11:00 एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे। 2:00 हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत। कल शाम 5:02 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर संगीत सरिता आप सुनेंगे। सदाबहार गीत कल शाम आप सुनेंगे 6:30 पर। लोकरंग कार्यक्रम होगा 6:45 पर और 7:20 पर। 7:30 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम ग्राम सभा। चित्रपट संगीत कल रात आप सुनेंगे 8:00। संगीत सरिता 8:20 पर और रात 9:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा मन चाहे गीत। तो ये थी हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: को तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
1: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
1: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना की 38वीं किश्त जारी। दतिया विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने की कल अंतिम तारीख। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में वृक्ष मित्र कार्यक्रम को किया संबोधित। इंदौर में मुख्यमंत्री ने 21,00,000 पौधारोपण का महाअभियान शुरू किया। और प्रदेश में तेज बारिश, 4 दिन का ब्रेक, आज 27 जिलों में बूंदाबांदी की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भिंड जिले के लाहार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1,25,15,000 से अधिक महिलाओं के खातों में 38वीं किश्त के 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 322,29,00,000 रुपए की लागत के 56 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि लाडली बहनों का सम्मान और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके हित में हर आवश्यक कदम उठाएगी।
1: 1,835 करोड़ की लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। लगभग हमारी 322 करोड़ की 56 योजनाओं की सौगात मिली, 325 करोड़ के आसपास की योजनाओं की सौगातें मिली है।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। उल्लेखनीय है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी नजर आया है। चंबल अंचल के इतिहास में पहली बार भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसी उम्मीदवार का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया था। उधर कांग्रेस ने यहां से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। घनश्याम सिंह भी कल नामांकन पत्र भरेंगे। इसके अलावा दतिया से आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव मैदान में है। आपको बता दें कि 2023 में दतिया सीट से कांग्रेस के राजेंद्र भारती विधायक बने थे, लेकिन भ्रष्टाचार के एक प्रकरण में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 जीसीसी डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर का शुभारंभ करेंगे। साथ ही राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को साझा कर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश, परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं भावी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव का उद्देश्य उच्च विकास वाले प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निवेश को गति देना और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करना है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के पहले 2 संस्करणों ने प्रदेश में प्रौद्योगिकी निवेश को नई गति प्रदान की है। कॉन्क्लेव 1.0 और 20,000 कृपया से दोबारा सुन ले। कॉन्क्लेव 1.0 में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 75,000 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए। कॉन्क्लेव 2.0 में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्राप्त हुए, जिनसे लगभग 48,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए। ई प्रवेश अभियान में अब तक प्रदेश में 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए कल तक 6,53,103 विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है, जबकि 5,65,576 आवेदनों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। द्वितीय चरण की कॉलेज स्तरीय काउंसलिंग वर्तमान में संचालित है तथा पंजीयन एवं प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित है। प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 4,206 विद्यार्थियों ने विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शिक्षक शिक्षा एनसीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। अब समाचारों, वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1880 के बाद समुद्र के बढ़ते तापमान और पिघलते हिमनदों ने वैश्विक समुद्री जल स्तरों को लगभग 20 से 23 सेंटीमीटर तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि धरती का औसत तापमान वर्ष 1900 की तुलना में लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। यह जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर चेतावनी का संकेत है। श्री चौहान ने यहाँ अर्थ यानी पृथ्वी का अनोखे अंदाज में अर्थ समझाया।
4: ERTH, अभी आपको बताएं, कमरे से निकलो, एनर्जी छोटी चीज है, बिजली का स्विच ऑफ कर दो, ये प्रतीक्षा मत करो कि दूसरा ऑफ करेगा। ऐसे अवॉइड प्लास्टिक की बात, सब्जी लेने जाओ तो कपड़े का थैला ले जाओ, तो कागज की थैलियां भी बन रही है। नल टपक रहा हो तो टोंटी ठीक से बंद करो, नहीं तो सुधरवाओ। पानी की बोतल में आधा पानी मत छोड़ो, बोतल संग लेके जाओ, एक एक बूंद पियो, कई बार वो भी चलता है, पी दो घूंट और फेंक भी। रिड्यूस वाटर वेस्टेज, ट्रैश मैनेजमेंट, गीला कचरा सूखा कचरा अलग, खाओ और कहीं भी फेंक दो, आदत बदलनी पड़ेगी। और ऐसे हेल्दी फूड, मोटा अनाज।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत BSF पहाड़ी से 21 लाख पौधारोपण के अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने यहां कहा कि जो हमें जीवन दे, सदमार्ग पर ले जाए, वह सदैव वंदनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए प्रकृति ही परमेश्वर के स्वरूप है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का आधार भी और वसुधा का श्रृंगार भी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर चलाया जा रहा एक पेड़ माह के नाम अभियान कोई शासकीय कार्यक्रम नहीं, ये जीवन के लिए सांसों का स्थायी प्रबंध करने का अभियान है। जल, जंगल, जमीन और जानवर, जिनसे हमारा पारिस्थितिकीय तंत्र तैयार होता है, ये अभियान इनकी सुरक्षा का मिशन है। कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सहभागिता की। शिवपुरी जिले में पीएम पोषण योजना के तहत कुल 2500 स्कूलों के 1,593,524 विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके संचालन की जिम्मेदारी 2,149 स्वसहायता समूह के पास है। अब खबर मौसम की। प्रदेश में तेज और भारी बारिश का दौर थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होगी। आज इंदौर सहित 27 जिलों में बूंदाबांदी और कहीं कहीं आंधी के साथ हल्की बारिश होने की अनुमान जताया गया है। वहीं भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन संभाग में दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भिंड, दतिया, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर में हल्की बारिश और आंधी की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में लाडली बहना योजना के तहत 38वीं किश्त से 2,26,846 महिलाओं के खातों में राशि जमा हुई। राजगढ़ के चारपुरा गांव में कल आयोजित हरियाली महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान के तहत नर्मदापुरम जिले को मार्च 2027 तक पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ 15 जुलाई तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा जिले में खाद की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई की गई, यहां 2 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आगर मालवा जिले के कानड़ में आयुष मेडिकल ऑफिसर ने मां और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए सही समय चुनना और 2 बच्चों के बीच सही अंतर रखने के बारे में जानकारी दी। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में सतर्कता विभाग की 2 दिवसीय कार्य निष्पादन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। और भोपाल के चर्चित तुषार शर्मा मौत मामले में एम्स दिल्ली के मेडिकल बोर्ड ने अपनी अंतिम फॉरेंसिक रिपोर्ट CBI को सौंप दी है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका।
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना
5: आरबीआई कहता है
6: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आज इसमें आप सुनेंगे उर्मिला पांडे के गाए कुछ लोकगीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये देवी गीत।

0: खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए।
2: 287 मेरी चाय।
3: अब गरीबों की जाय बन गई है।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग, और लीजिए अब सुनिए उर्मिला पांडे से ये दादरा।

उर्मिला पांडे के गाय इस दादरा के साथ ही लोकरंग का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। शाम के 7:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: अब समय हो चला है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा का, और हमारे साथ में उपस्थित हो चुके हैं डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी, जो कि विषय विशेषज्ञ आज के। आज का विषय है धान के उन्नत उत्पादन तकनीक। इस विषय से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप सीधे टेलीफोन लगाकर हमसे कर सकते हैं। और डॉक्टर संजीव वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। क्योंकि ये मौसम में थोड़ा सा बदलाव हो गया और हमें धान पर चर्चा इसलिए भी करना है कि जो किसान भाइयों की रोपणी पूर्ण अवस्था प्राप्त कर चुकी है, वो रोपाई का कार्य कर रहे हैं, जिनकी रोपणी की तैयारी नहीं हो पाई या पानी की वजह से समस्या आई है, तो उनके लिए भी हम आगे के कार्यक्रम में आपको चर्चा करेंगे कि किस तरह से उनको अपना ये मैनेजमेंट खेती का करना है।
0: बिल्कुल। तो मैं डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, मैं टेलीफोन नंबर बता दूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा टेलीफोन नंबर हमारा जो है परिवर्तित है। किसान भाई ध्यान दे, हमारा आज का टेलीफोन नंबर है 2660901। इस नंबर पर आप टेलीफोन लगाएं। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। और विषय हमने आपको बता ही दिया है, एक बार पुनः आपको बता देते हैं आज का विषय धान की उन्नत उत्पादन तकनीक। इस विषय से संबंधित आप अपनी समस्याएं, अपनी जिज्ञासाएं हम तक पहुंचाएं। हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित है, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ डॉक्टर साहब,
1: बहुत अच्छी शुरुआत करी सोनी जी आपने। किसान भाइयों से मैं भी अनुरोध करूंगा कि अपनी जो भी खाली जगह पड़ी है, इस समय वृक्षारोपण अवश्य करें। सबसे उपयुक्त तो समय है ये वृक्षारोपण का, क्योंकि हम देख रहे हैं पर्यावरण में कितना परिवर्तन आ रहा है इस वजह से, और तापमान में उतार चढ़ाव आ रहा है, मौसम में बदलाव आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी खाली खेतों के आसपास जहां भी जगह वृक्षारोपण करें। तो
0: हम वृक्षारोपण करें, और हमें संकेत मिल रहा है किसान भाई लाइन पर है, उनका टेलीफोन लेते हैं हम।
1: जी
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: हेलो
0: जी, आप शुभ नाम बताएं, स्थान भी बताएं।
2: हाँ जी,
0: आप अपना शुभ नाम बताएं, स्थान भी बता दें हमें।
2: नेत्राम खोजा बोल रहा जी, कोठिया।
0: नेत्राम जी, आपका सवाल क्या है?
2: सवाल जो है जी, मैं सोविन बोल रहा हूँ।
1: हाँ
2: तो वो मैं पीले पत्ता हो रहा है।
1: अच्छा, तो नेत्राम जी एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि चित्तीदार पीले पत्ते हो रहे हैं तो वो येलो विंग मोजेक यानी पत्त चित्तपर्णी रोग है, पीली पत्ती रोग है। और इससे बचाव का सबसे प्रथम उपाय है, जो ग्रसित पौधे हैं हमारे, उनको तत्काल आप खेत से उखाड़ करके नष्ट कर दें, बाहर कर दें। इसके बाद रस चूसक कीटों से बचाव हेतु इमिडाक्लोरोपिड या थायोमिथाक्साम नामक दोनों में से कोई एक दवा ले लेंगे। यदि आप थायोमिथाक्साम लेंगे तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, यानी 15 लीटर का पंप है तो 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इस दवाई का छिड़काव अवश्य कर दें। क्योंकि ये जो पीतवर्णक रोग है सोयाबीन में, ये रसचूसक कीटों की वजह से आता है, वाइट फ्लाई होती, सफ़ेद मक्खी जो होती उसकी वजह से आता है। हमारे किसान भाई ग्रामीण भाषा में मच्छर बोलते हैं, तो उसकी वजह से आता है, और हमें उसके नियंत्रण का करना अति आवश्यक है। पहले आप ग्रसित पौधों को बाहर कर दें, इसके बाद आप अपना जो दवाई बताई गई है इसका छिड़काव अवश्य करें। और 1 एकड़ में 200 लीटर पानी का उपयोग करना है आपको छिड़काव के समय, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
0: तो नेत्राम जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया और आपकी जिज्ञासा का समाधान डॉक्टर संजीव वर्मा जी ने कर दिया है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे किसान भाई जो भी समस्या इस वक्त उनकी है वो हम तक पहुंचाए। देखिए हमें फिर संकेत मिला है, एक किसान भाई लाइन पर है, चलिए टेलीफोन लेते हैं उनका। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: हेलो ग्राम सभा।
0: बिल्कुल, हेलो ग्राम सभा में आपका टेलीफोन लग चुका है, आप अपना शुभ नाम बता दें, स्थान भी बताएं।
2: सत्यपाल लोधी, जिला सागर, ग्राम खिरिया से बोल रहे थे
0: सर। सत्यपाल लोधी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें।
2: सर जी बारिश तो कम हो रही है।
0: अच्छा,
2: धान की रोपाई कर रही, तो सर वो कैसे ध्यान रखे?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। और देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि चूंकि आपने रोपाई कार्य पूर्ण हो गया आपका धान का
2: जी,
1: और पानी की समस्या आ रही है कई जगह, हमारे किसान भाई ये कह रहे हैं, तो मैं यहाँ उनको बताना चाहूँगा कि लाइफ सेविंग इरिगेशन देना अति आवश्यक है। अर्थात अब ऐसी स्थिति में जहाँ आपने रोपाई कर चुके हैं, चूँकि आज की हमारी धान पर ही चर्चा है, तो वहाँ स्प्रिंकलर पद्धति से आप सिंचाई का कार्य करें। मतलब कि जो धान में पानी भर के ना रखने की जगह आप स्प्रिंकलर यानी फव्वारा पद्धति से अपने खेतों की सिंचाई करें, क्योंकि मान लो लंबा खिंच गया मानसून में बारिश कम हुई तो हम अपनी धान की को बचा पाएंगे और आने वाले समय में उत्पादन भी प्राप्त कर पाएंगे, है ना। फव्वारा पद्धति से सिंचाई करें, पानी की बचत करना शुरू करें, क्योंकि आगे तक अभी चूँकि रोपाई का कार्य ही हुआ है, अभी लंबा समय है धान में, 120 दिन रहते हैं।
0: तो सत्यपाल लोधी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और जो कि इस समय जो है हमने जो आज का विषय रखा है धान की रोपाई, जो धान की उन्नत तकनीक है उससे संबंधित है, और इस समय धान में काफी कुछ सामूहिक कार्य भी हो रहे हैं। खैर, हम एक सवाल लेते हैं, हमारे किसान भाई लाइन पर है। हाँ जी जी, नमस्कार।
4: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, सजीव फोन इन कार्यक्रम। हेलो, ग्राम सभा में आपका टेलीफोन लग चुका है, आप शुभ नाम बताए अपना।
4: जयराम जी साहब
0: जी, आप शुभ नाम बताए अपना।
4: जगत सिंह चरार, बड़ी तहसील बिगौन, जला रहा है
0: जी। अब आप सवाल करें।
4: क्या सर?
0: आप सवाल करें, आप क्या
1: आपका क्या प्रश्न है,
0: पूछिए करें आप।
4: सर ये बोल रहा है वो नंबर नहीं है चालू, दो वाला तीन वाला
0: नहीं नहीं, अब आपका फोन तो लग गया ना, आप तो बात कर रहे हैं ना,
1: हो तो पूछिए आप।
0: आपके पास कोई सवाल है
4: जी?
0: हाँ तो पूछिए, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं।
4: सोयाबीन और उड़दा की पत्ता खाला झुलझरा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: झुलस रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं क्या?
4: नहीं, ये इल्ली ने खा लिए।
1: अच्छा अच्छा, इल्ली ने खा ली है, तो आपको मैं जैविक उपाय बता दे रहा हूँ। सोयाबीन में और उड़द में जो भी इस तरह की इल्ली का प्रकोप कहीं देखने को मिल रहा है, तो बेबेरिया बेसियाना नामक जैविक कीटनाशक आता है और सब जगह ये बाजारों में भी उपलब्ध है, लिक्विड भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो बेबेरिया बेसियाना का छिड़काव अपने खेतों में अवश्य करें किसान भाई, जहाँ भी इस तरह की समस्या आ रही है। और अपनी निगरानी करें खेतों की, जहाँ क्योंकि जो इस समय सोयाबीन में जो इल्ली आती हैं, तीन तरह की आती हैं, टोबैको कैटरपिलर, तंबाकू की इल्ली, इसके बाद सेमी लूपर, ग्रीन सेमी लूपर और गर्डल बीटल। तो कुछ बाद की अवस्था में आएंगे, शुरुआती अवस्था में आएंगे, तो उससे बचाव के लिए जो मैंने बताया है बेबेरिया बेसियाना नामक जो पाउडर है, या तो पाउडर फॉर्म में मिलेगा या लिक्विड में, उसका छिड़काव करें।
0: तो
1: हम जो चर्चा आज कर रहे थे वो है धान पर प्रमुख रूप से। तो धान में हमारी जो बिजाई की पद्धतियां हैं, तो धान में तीन तरह से हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं धान की, जिसमें सबसे पहली जो पद्धति है वो परंपरागत पद्धति है हमारे किसान भाई, जिससे क्योंकि रोपाई का कार्य परंपरागत पद्धति में सबसे अधिक क्षेत्राच्छादन में होता है। और दूसरी पद्धति है वो SRI पद्धति, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसको हम किसान भाई धान सगरीकरण भी हिंदी में बोल कह सकते हैं। इस पद्धति में कुछ विशेष परिस्थितियों में धान की खेती करी जाती है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और तीसरी पद्धति है DSR, डायरेक्ट सीडेड राइस। यहाँ मैं किसान भाइयों को एक बात अवश्य बताना चाहूँगा, जो किसान भाई धान की रोपणी नहीं तैयार कर पाए पानी की समस्या के चलते, या जिन पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है तो और बुवाई का कार्य अभी नहीं हुआ है, तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो इस परिस्थिति में अभी जो जैसी मौसम की स्थिति है
0: जी,
1: उसको ध्यान में रखते हुए DSR डायरेक्ट सीडेड राइस पद्धति का ही से चुनाव करना चाहिए।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो हम चर्चा करेंगे। एक लाइन पर किसान भाई है, पहले हम उनका फोन ले लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपके कार्यक्रम में।
1: जी बोलने
0: जगह, आप सवाल करें।
1: कट गया फोन से। तो हम बात कर रहे थे कि
0: जी
1: हाँ, किस तरह से हमें, तो जो परंपरागत पद्धति में है, मैं सबसे पहले बात करूंगा बीज मात्रा की
0: जी।
1: और
0: चलिए एक सवाल लेते हैं किसान भाई का।
1: जी
0: हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार, आप
0: शुभ नाम बताएं अपना।
5: जी जी बिल्कुल सर, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा है सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप सवाल करें।
5: जी धन्यवाद सर जी। सर जी मेरा ये सवाल था कि एक खेत में मैंने धान की रोपाई कर दी
1: जी,
5: लेकिन सर क्या हो रहा है, अभी दो चार दिन से देख रहा हूँ मैं, पूरे खेत में नहीं, मेड़ के बगल में कहीं कहीं धान पीली पड़ रही है
1: जी।
5: तो अभी मैंने उसमें कोई भी दवाई नहीं दी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आपसे परामर्श लेना चाहता हूँ।
1: हाँ देखो क्या होता है, कई बार किसान भाइयों से मैं बताना चाहूंगा कि आपने जो रोपनी लगाई है कितने दिन पहले लगाई है?
5: बिल्कुल
1: कितने दिन हो गए आपने को धान लगाए हुए? अभी जो लगाई है
5: सर जी, धान को लगाए लगभग मेरे को हो चुके हैं 20 दिन।
1: 20 दिन हो गए हैं। तो मेड़ों मेड़ों के किनारे दिक्कत आ रही है सिर्फ आपको?
5: बिल्कुल बिल्कुल, बीच में तो एकदम सही है।
1: हाँ तो आप पहले अपना जो सैंपल है नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में ले जाकर के पौधे दिखा दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि देखने पे ही स्थिति का पता लगेगा। और आपने यूरिया का एक डोज दे दिया, उसमें छिड़काव कर दिया?
5: बिल्कुल अभी दिया था सर मैंने, 4-5 दिन पहले।
1: हाँ तो 4-5 दिन बाद उसकी रिजल्ट समझ में आएगी, लगभग एक सप्ताह के बाद जो है नीम कोटेड यूरिया आता है, एक सप्ताह के ऊपर उसकी रिजल्ट। हल्की सी सिंचाई, उसमें यदि पानी आपको नहीं हो वहाँ पे उपलब्ध तो हल्की सिंचाई का कार्य अवश्य करें वहाँ पर, है ना?
5: बहुत
0: जी। तो मनोज नामदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिवपुरी से टेलीफोन लगाया, और इसी तरह की अन्य किसान भाइयों की भी समस्या हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती
1: तो
0: है।
1: हम तो जो बात कर रहे थे
0: एक टेलीफोन और ले लेते हैं जी। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, आप शुभ नाम बताए अपना।
6: हेलो सर, सवाल रहेगा तुम्हारो
1: जी।
6: बोले सर नमी नंजा खेत में दवाई काम कर है कचरा की किने का?
0: अच्छा
1: बिल्कुल एकदम सूख गया है, कैसी स्थिति है खेत में? बिल्कुल नमी नहीं है बिल्कुल भी
6: नहीं? बिल्कुल तो है कि थोड़ी।
1: कौन सी फसल में दवाई डाल रहे हैं आप?
6: यही सोयाबीन है, जैसे मक्का है।
1: हल्की भी नमी है तो काम कर जाएगी, है ना? आप पपड़ी तोड़ के देख लें, मामूली नमी है तो दवाई काम कर जाएगी। और पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखना, 200-250 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव अवश्य करना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा मक्का में भी और सोयाबीन में भी। इस बात का विशेष ध्यान रखना, पानी की मात्रा 500 लीटर प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 एकड़ में 500 लीटर से ऊपर ही पानी जाना चाहिए, है ना? तो पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, पानी जितना ज़्यादा आप उपयोग करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टेलीफोन लगाया। और चूंकि हाँ डॉक्टर साहब,
1: तो हम चर्चा कर रहे थे परंपरागत पद्धति में जो बीज मात्रा है वो लगभग 10 से 12 किलो लगती है, और जो दूसरी पद्धति है उनमें बीज मात्रा भी कम लगती है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जिसको सिरी पद्धति हम बोलते हैं, और जो तीसरी पद्धति हमारी जो है उसमें 14 किलो बीज मात्रा प्रति एकड़ लगती है।
0: अच्छा,
1: जिसको हम DSR बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पर किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि तीनों पद्धतियों में ये अंतर है। तो सबसे पहली बात आती परंपरागत पद्धति में, तो हमारे रोपनी तैयार किसान भाई कर चुके होंगे और बुआई का कार्य कर रहे हैं, रपाई रोपाई का कार्य कर रहे हैं। श्री पद्धति में विशेष तरह से नर्सरी तैयार करी जाती है, किसान भाइयों को यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जमीन से

0: की समस्या है।
1: सही
0: और उसी प्रकार से डीएसआर पद्धति में वही पानी की मात्रा 1500 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब में भी हमारे किसान भाइयों को काम हो जाएगा,
1: हो जाता है बिल्कुल। एक किसान भाई लाइन पर है तो टेलीफोन लेते होंगे। जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: हेलो।
1: हाँ जी स्वागत है आपका, शुभ नाम बताएं।
2: नमस्कार सर, मेरा नाम बसंत कुमार है।
1: जी बसंत जी कहाँ से?
2: नरसिंहपुर जिला ग्राम कोट से।
1: आप जी बोलिए, सवाल करें।
2: जी सर, ये जो अपना गन्ना है
0: जी,
2: गन्ने में अपनी गिंडोली तो आ रही है बराबर, पर गन्ना मोटाई नहीं दे रहा।
0: कितने दिन का हो गया आपका
2: गन्ना? अपना हो गया करीब करीब 2-3 महीने का हो गया।
0: अच्छा अच्छा, तो आपने उर्वरक की कितनी मात्रा अभी दे चुके हैं?
2: सर 2 बार खाद दी है।
0: तो आप एक काम करें, लिक्विड मात्रा, लिक्विड रूप से पीएसबी, केएसबी और जेडएसबी तीनों आ रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, है ना? इनका कॉम्बिनेशन पीएसबी, केएसबी, जेडएसबी और एजिटोबैक्टर चारों, एक एक लीटर चारों ले लें, ये 5-4 लीटर हो जाएंगे आपके, और इनको घोल बना के 200 लीटर पानी में आप स्प्रे कर दें एक, तो इसको अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं, वो वहाँ क्या होता, कई बार आपका उर्वरक मिट्टी में पड़ा रहता है और वो उपयोग में नहीं आता, एक्टिवेट नहीं होता, एक्टिवेट फॉर्म में नहीं आता। तो जब ये आप उपयोग करेंगे तो वो एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा, आपका जो खाद वहाँ पे पड़ा हुआ है मिट्टी में
2: जी,
0: तो वो अच्छी रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करेगा।
2: धन्यवाद,
0: है ना
2: सर। ये सोयाबीन में अपने पत्ते कमते जा रहे हैं,
0: क्या हो रहे हैं पत्ते?
2: सोयाबीन का पत्ता
0: हाँ,
2: कीड़े खा जा रहे हैं,
0: कीड़े खा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा निगरानी करें, दो तरह के कीड़े शुरू। कितने दिन का हुआ आपका सोयाबीन अभी?
2: हमारा सोयाबीन हो गया 20 दिन जैसा होने वाला।
0: 30 दिन का?
2: 20 दिन
0: का। तो शुरू में तो ब्लू बीटल करके एक कीड़ा आता है, तो आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का कीटनाशक का छिड़काव कर दें, और यदि इल्ली कहीं निगरानी करें, यदि इल्ली कहीं देखने को मिल रही है सेमीलू पर, यदि पत्तियां भी ऐसी चिर चिर जैसी जा रही हो, तो वो सेमीलू पर की वजह से होता है। सेमीलू पर इल्ली हरे रंग की होती, कुंडलक इल्ली बोलते हैं इसको। तो इसके लिए आपको वेवेरिया वैसियाना नामक जो जैविक कीटनाशक है उसका उपयोग करें और उसको छिड़काव करें। तो इससे क्या होता है, उसकी त्वचा पर फंगस आ जाती, जो इल्लियां हैं उसकी त्वचा पर फंगस आ जाएगी और ये वहाँ एक्टिवेट हो जाएगी ये दवाई। आप जब स्प्रे करेंगे तो आगे भी इन कीटों का, इल्लियों का प्रकोप कम होता जाएगा उस जगह पे।
2: धन्यवाद सर। सर और ये सोयाबीन में अभी कचरे की कौन सी मारी जाए?
0: कचरे की अभी आप कोई भी पोस्ट इमरजेंस ढेर सारी बाजार में आ रही है,
2: हमारा बनगांजा भी आता है और ये दूबा,
0: अभी आपने कोई सा भी नहीं स्प्रे किया?
2: नहीं।
0: डाइक्लोसेलम तो प्री इमरजेंस है, पोस्ट इमरजेंस में जो अधिकतर हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं, जो विभिन्न नामों से मिलती है अपने वहाँ पर, जो बीडी साइड है उसका उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं पोस्ट इमरजेंस के लिए। प्री इमरजेंस में डाइक्लोसेलम होता है जो अंकुरण के पूर्व उपयोग होता है, और पोस्ट इमरजेंस में हमारे किसान भाई जो लोकल में कई नामों से ओडीसी और कई नामों से मिलती है
2: जी,
0: उसका
2: जी,
0: उपयोग कर सकते हैं
2: जी।
0: इसमें चौड़ी और सकड़ी दोनों पत्ती के जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण मिलेगा आपको।
1: तो बसंत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, नरसिंहपुर से आपने टेलीफोन लगाया और इतने विस्तार से हमारे डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा जी ने आपको विस्तार से जानकारी दी, दूसरे किसान भाइयों ने भी इसका लाभ उठाया और लगातार हमारे पास टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं। फिर भी हम दोहरा देते हैं, हमारा आज का विषय है धान की उन्नत उत्पादन तकनीक, इस विषय पर आप सवाल करें और हम टेलीफोन ले रहे हैं। जी स्वागत है आपका हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा में, शुभ नाम बताएं अपना।
3: जी सर नमस्कार, मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ जिला सीहोर से।
1: नरेंद्र दांगी जी सवाल करें आप।
3: सर हमने T10 सोयाबीन बोई, धान बोई सर 20 दिनों के हो गए सर, उसमें खरपतवार है तो उसके लिए कौन सी दवाई डालें?
0: देखो धान का सबसे बढ़िया खरपतवार नाशी है बिस्पायरेवेक सोडियम, है ना, जो उसका कंटेंट है, विभिन्न नामों से नॉमिनी गोल्ड और अन्य नामों से बाजार में उपलब्ध है ये, और इसको हम 25 दिन के पहले इसको उपयोग कर लेना है। आपने कौन सी पद्धति से धान लगाई, सीड से लगाई, कैसे लगाई?
3: नहीं
1: उसका तरीका
0: से बुवाई करी है कि आपने रोपाई करी है?
3: सर सीडिल मशीन से बुवाई।
0: हाँ तो ये सबसे उपयुक्त समय है, 20 दिन की यदि आपकी हो गई है, 25 दिन के पहले

0: जो बिस्पायरेबिक सोडियम नामक जो मैंने दवाई बताई है उसका उपयोग कर लें तो उपयुक्त होगा, है ना। 200 ml प्रति हेक्टेयर, 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है 200 लीटर पानी में।
1: तो नरेंद्र दांगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीओ से टेलीफोन लगाया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ली। डॉक्टर साहब, अभी
0: तो हम बात कर रहे थे कि जो तीनों पद्धतियां जो हैं, इस समय जो हमारे किसान भाइयों को
1: टेलीफोन ले रहे हैं क्योंकि किसान भाई का टेलीफोन ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: जी, जी,
1: नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: जी नमस्ते सर।
1: जी आप अपना शुभ नाम बता दें, स्थान बता दें, फिर सवाल करें।
2: जी सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: जी एक बार नाम पुनः दोहराएंगे।
2: जी सर, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
1: संतोष कुमार राव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल करें।
2: जी सर, जैसे कि हम लोग सर इस समय धान की फसलें लिए हुए हैं।
0: जी
2: जी सर, तो ये जो धान की रोपाई की जाती है,
0: जी
2: ये लगभग कितने दिनों में की जाए सर?
0: देखिए, धान में वही बता रहा हूँ कि दो पद्धतियाँ धान की, श्री पद्धति में लगभग 14 दिन का रोपा हम रोपाई करते हैं, परंपरागत पद्धति में 1 माह का रोपा रोपाई करते हैं। तो आप यदि परंपरागत पद्धति से कर रहे हैं, आपके पास भरपूर पानी उपलब्ध है, तो उस पद्धति से कर सकते हैं। श्री पद्धति में 14 दिन का रोपाई करते हैं। यहाँ पर मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो रोपणी जब वहाँ से खेत से उखाड़ते हैं तो उसमें बीज तंतु लगा होना चाहिए। 12 से 14 दिन का रोपा उपयोग करते हैं, बीज तंतु के साथ, मतलब जड़ें उसकी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, तभी श्री पद्धति कहलाएगी, वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो उसको वहाँ, और जो रोपा है ज़्यादा खेत से दूर नहीं होना चाहिए। श्री पद्धति में मैंने रोपणी बता रहा था, जैसा कि रोपणी तैयार करना है, तो वो खेत के, जिस खेत में आप रोपणी लगाने वाले हैं श्री पद्धति में, उसी खेत में आपको रोपणी तैयार करनी है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ एक बात, तो आप जो है लगभग यदि परंपरागत से करें तो 1 माह का रोपा लगता है, और श्री पद्धति से करेंगे 8 से 14 दिन का रोपा लगेगा। तो आप कम दिन का रोपा लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, 25x25 सेंटीमीटर पर रोपाई करनी है, है ना। उसके लिए रस्सी से लाइनें खींच के और लाइन रस्सी बांध के रोपाई कार करें।
1: जी तो संतोष कुमार राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, उमरिया मध्य प्रदेश से आपने टेलीफोन लगाया। और चूंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन हमारे किसान भाई लगाए, हमारे विशेषज्ञ भी जो है उन सभी किसान भाइयों के सवालों का जवाब दे। चूंकि किसान भाइयों अभी कुछ समय है, आप चाहें तो टेलीफोन लगा सकते हैं, वरना हम डॉक्टर साहब से समय का सदुपयोग करते हैं।
0: तो हम कहना चाहेंगे किसान भाइयों की इस समय कौन सी बात का विशेष ध्यान रखें, जिन किसान भाइयों की धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पाया, जिनकी पौध अधिक 1 माह से अधिक की हो गई, 1.5 माह की हो गई, तो वो रोपाई कार्य से बाधित हो गए हैं, तो वो यदि उनके पास बीज उपलब्ध है तो वो सीधे बुवाई पद्धति का उपयोग करें जिसमें कम पानी लगेगा। इसमें खेत को मचाने की आवश्यकता नहीं है, सीड ड्रिल से सीधी बुवाई का कार्य करना है और सिंचाई का कार्य कर देना है। या तो पानी गिर जाएगा, बारिश हो जाएगी, तो अंकुरण आ ही जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो सीधी बुवाई के लिए लगभग 12 से 14 किलो बीज प्रति एकड़ मान से लगेगा, और अपनी जो गेहूं की सीड ड्रिल है उससे भी बुवाई कर सकते हैं। बाकी ध्यान के प्लांटर भी आते हैं, और उसमें प्राइमिंग करा जाता है, बीजों को अंकुरित करके भी बिजाई का, यदि आप धान का प्लांटर उपयोग कर रहे हैं तो बीजों को अंकुरित करके फिर बुजाई का कार्य करते हैं, तो उससे अंकुरण जल्दी आता है धान में, और आने वाले समय में आपको पौध संख्या अच्छी मिलती है। तो DSR पद्धति बोलते हैं इसको, हमारे किसान भाइयों से मैं बताना चाहूँगा। इस बात में विशेष ध्यान रखना है कि जब DSR पद्धति से आप कर रहे हैं धान की खेती, तो आपको 13 से 25 दिन के बीच में बिस्पायरेबिक सोडियम नामक जो कहना चाहिए कि खरपतवार नाशी है, उसका उपयोग अवश्य कर लेना है, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। और एक और चीज़ है इसमें, 10 दिन 20 दिन और 30 दिन पर ताउची गुरमा, जिसको हम बोलते हैं कोनो बीडर, अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम उसका ताउची गुरमा है, तो इसका निंदाई कार्य अवश्य करना है 10 दिन 20 दिन और 30 दिन पर। तो इस जो दोनों पद्धतियों से मैंने बताया है, श्री पद्धति और परंपरा DSR पद्धति, दोनों में खेत में पानी भर के रखने की आवश्यकता नहीं है।
1: बिल्कुल, हमें संकेत मिल रहा है, किसान भाई लाइन पर है, तो उनका टेलीफोन हम लेते हैं। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, शुभ नाम बताएं अपना।
3: हाँ सर, मेरा नाम संतोष सोनी है।
1: संतोष सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप स्थान का नाम बताएंगे हमें।
3: हाँ, मैं राजा बिलहरा सागर से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए, बताइए आपका प्रश्न क्या।
3: हमारे यहाँ पे धान की बुवाई हो

0: हो गई है
1: जी,
0: और अभी मौसम का इंतजार कर रहे हैं
1: जी। तो वो भाई आपने सीड ड्रिल से करी बोनी?
0: पहले दो दिन पहले बोनी हुई है।
1: सीड ड्रिल से बोनी करी है?
0: हाँ, सीड ड्रिल से ही बोनी।
1: बहुत बढ़िया। अब आपको विशेष ध्यान रखना कि जो प्लांटिंग आपने दो दिन पहले बोनी करी है, तो जो प्लांटिंग अवश्य कर दें अपने खेत में, मतलब 15 सेंटीमीटर अबंड फार्मर हो आपके पास या डिचर हो जिससे मिट्टी उठ जाए, है ना। 15 सेंटीमीटर ऊंची पाल एक एक बीघा के प्लॉट कर दें, और छोटे हो तो और अच्छा है, है ना।
0: ठीक है सर, और सावधानी रखना पड़ेगा थोड़ा, बताएं।
1: यही पहली सावधानी यही है कि आप सबसे पहले तो प्लॉटिंग कर दें खेत में, ताकि पानी जब भी गिरेगा तो रुक करके चलेगा, आपके खेत में बह के नहीं निकलेगा। तो पानी रोकने के लिए छोटे प्लॉट साइज होने चाहिए DSR पद्धति में। दूसरा, 13 से 25 दिन के बीच में आपको खरपतवार नाशी का उपयोग अवश्य कर लेना। DSR आपने DSR किया है चूंकि
0: 25 दिन के
1: 13 से 25 दिन में, और जैसे
0: खरपतवार
1: बिस्पायरेबिक सोडियम नॉमनी गोल्ड और कई नामों से बाजार में आता है बिस्पायरेबिक सोडियम रहता है।
0: गोल्ड हमारे यहाँ बहुत चल रहा है।
1: हाँ, तो 10 SL जो आता है बिस्पायरेबिक सोडियम, तो उसका छिड़काव आपको करना है 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, लगभग
0: 80 ml
1: प्रति एकड़, 200 लीटर पानी में, है ना।
0: ठीक है,
1: लगभग 200 लीटर पानी में, तो आपको इसका छिड़काव अवश्य करना है। इससे 13 से 25 दिन का ध्यान रखना, नहीं तो क्या होता है, इस पद्धति में क्या होता है कि यदि आपने समय पर छिड़काव नहीं कर पाए खरपतवार नाशी का, तो बीड पैडी कंपटीशन हो जाता, मतलब खरपतवार और धान में कंपटीशन हो जाता घास में, तो वो तेजी से घास ऊपर चली जाती है और धान नीचे रह जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। और पालें जरूर बना दें अपने खेत में, छोटे छोटे प्लॉट बना दें, अभी मौका है आपके पास, है ना। दो तीन चार दिन में पानी गिर जाएगा तो फिर आपको अंकुरण मिल ही जाएगा, नमी होगी तो अंकुरण तो होना शुरू हो जाएगा, अंकुरण तो आ जाएगा, नमी होगी काफी खेत में आपके, कोई दिक्कत नहीं है।
2: तो संतोष सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सागर मध्य प्रदेश से टेलीफोन लगाया और इतने विस्तार से आपने जानकारी ली। और चूंकि अब जो है हमारे पास समय नहीं है कि हम अगले किसान भाई का टेलीफोन लें, लेकिन चलते चलते डॉक्टर साहब हम आपसे इतना जरूर जानना चाहेंगे कि सामयिक तौर पर संक्षिप्त में बताएं कि हमारे किसान भाई जो है अब धान की फसल में क्या करें।
1: देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, धान की चर्चा अपन ने करी, कई प्रश्न भी आए। यहाँ मैं किसान भाइयों से अवश्य बताना चाहूंगा, कैच क्रॉप अवश्य कर लें। जो किसान भाई अपनी परंपरागत फसल नहीं लगा पाए, सोयाबीन नहीं बो पाए पानी की कमी के चलते, या धान नहीं लगा पाए हैं, तो वो मूंग उड़द या तिल की बुवाई कर सकते हैं। ये कम अवधि की फसल है, अभी हालांकि समय है, 15 जुलाई तक बोनी उनकी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो लेट होते जा रहे हैं, उनको बुवाई में समय लग रहा, जुलाई माह में भी नहीं हो पा रही है बोनी, तो उनको फिर कैच क्रॉप लेनी पड़ेंगी, और उसके लिए तिल उड़द या मूंग की फसलें बहुत अच्छी हैं आने वाले समय के लिए। कम अवधि की भी हैं, लगभग 80 दिन में आपकी उड़द की फसल आ जाती है, 60 से 65 दिन में मूंग की फसल आ जाती है, और लगभग 80-85 दिन में तिल की फसल आ जाती है। तो ये तीनों में से जो भी उपलब्ध हो जाए, यदि इस माह हमारे किसान भाई नहीं कर पाए हैं बोनी किसी वजह से पानी की समस्या के चलते, तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपने खेतों को खाली नहीं छोड़ें और ये कैच क्रॉप अवश्य ले लें।
2: बिल्कुल, तो ये तो आपने सलाह दी कि पानी की वजह से हमारे किसान भाई बोनी नहीं कर पाए, और कई कई जगह ज्यादा पानी गिर गया है डॉक्टर साहब वहाँ?
1: देखिए, जहाँ पानी गिर गया है वहाँ तो कोई समस्या है नहीं, जल निकास की व्यवस्था करें, जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो गई, यदि सोयाबीन है तो जल निकास की व्यवस्था करें, धान है तो कोई समस्या नहीं है, धान के अलावा दूसरी फसलें हैं तो उपयुक्त जल निकास, उड़द मूंग भी हमारे कई किसान भाई बोनी कर चुके हैं जैसा कि अभी किसानों ने प्रश्न किया, तो वहाँ जल निकास की उपयुक्त व्यवस्था करें, जैसे ही बतर मिलती है खेतों में समुचित जल निकास की व्यवस्था करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अपने जो बगीचे हैं उनमें यदि बतर आ गई हो तो एक बार कल्टीवेटर अवश्य चला दें, ताकि वहाँ पर खरपतवार ना उगें, इस बात का विशेष ध्यान हमारे किसान भाई रखें। और चूहा नियंत्रण के उपाय पर भी हमारे किसान भाई को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि खेतों में जैसे ही बारिश होती है तो उनके बिलों में, चूहों के बिलों में पानी भर जाता है, और वो किसान भाइयों के गोदाम और अन्य जगहों पे आने लगते हैं चूहे, तो चूहे बाहर आ जाते हैं बिलों से, और वो इस तरह अपने गोदामों पर और अन्य जगहों पर अटैक करते हैं, तो वहाँ पर चूहा नियंत्रण के उपाय अवश्य करें अपने गोदामों में, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
2: तो किसान भाइयों, ये तो था हमारा आज का सजीव फोन इन कार्यक्रम। हेलो ग्राम सभा, आज का विषय हमने रखा था धान की उन्नत उत्पादन तकनीक। हमारे आज के विशेष विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय कुमार वर्मा जी। वर्मा जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद किसान भाइयों।
2: और आज के कार्यक्रम का संयोजन किया था चंद्रशेखर शर्मा ने, उद्घोषिका रक्षा तंवर, प्रसारण सहयोगी फरनाज हसन। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया प्रवीण कुमार सिंह और राजू बासे ने। और अब महेश सोनी को दे आज्ञा। नमस्कार।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोढ़ी।
3: आज हम बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीन देशों की यात्रा की, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री मोदी इन तीन देशों में गए जहां भारत का तीनों देशों के साथ संबंध है उनको गहरा किया, डिफेंस पर बातचीत हुई, पार्टनरशिप्स पे बात हुई और इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स पर भी बात हुई है। प्रोफेसर मिश्रा, सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की विजिट को देखते हैं जो जुलाई 6-8 में हुई और इस विजिट में लगभग 14 की एग्रीमेंट साइन हुए हैं, तो ये जो तीन देश का दौरा रहा है प्रधानमंत्री का, ये कितना महत्वपूर्ण है और जो शुरुआत हुई इंडोनेशिया में, हम वहाँ से शुरुआत करते हैं।
4: देखिए सिमरन जी, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा था तीन देशों का, इंडोनेशिया से शुरू हुआ जैसा कि आपने बताया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पर जाकर खत्म हुआ। ये तीनों ही देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के तहत और भारत के महासागर विजन के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि इन तीनों ही देशों में भारत और इन मित्र देशों के बीच में रक्षा, सुरक्षा से लेकर के आर्थिक मुद्दों पर, सेमीकंडक्टर और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, स्पेस सेक्टर को लेकर, पीपल टू पीपल कनेक्ट को लेकर, के साथ ही साथ जो नए उभरते हुए क्षेत्र हैं उन पर भी तमाम समझौते हुए हैं, तमाम एग्रीमेंट्स हुए हैं। और इससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ अपनी एक्ट ईस्ट नीति को एक पूरा साकार रूप दे रहा है, बल्कि ये जो इंडो पैसिफिक के देश हैं ये भी चाहते हैं, ये भी उसमें पूरी तत्परता के साथ लगे हुए हैं। जहां तक इंडोनेशिया का सवाल है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा के दौरान 20 समझौते हुए, 14 MOUs हुए और 6 पर समझौता हुआ और उसका एक अनाउंसमेंट हुआ। अगर हम 14 समझौतों की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल डिफेंस को लेकर के इंडोनेशिया ने अपनी सहमति व्यक्त की है और कहा है कि हम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेंगे। और इसके साथ वो दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है जो भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर के व्यापार करना चाहता है। इसके साथ ही साथ एयर टू एयर मिसाइल, जिसमें हमारी अस्त्रा मिसाइल है, उसको लेकर भी बातचीत हुई है और उसको लेकर भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। जहां तक मेरी समझ है इस क्षेत्र को लेकर के, सरफेस टू एयर मिसाइल के क्षेत्र में भी आकाश मिसाइल को लेकर भारत और इंडोनेशिया के बीच बात हो रही है। लेकिन समझौतों में सिर्फ रक्षा और सुरक्षा के संबंध ही नहीं, मैरिटाइम सिक्योरिटी ही नहीं, इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच में एक स्टील सप्लाई चेन बनाने की बात हुई है, क्योंकि इंडोनेशिया निकल मिनरल होता है, उसके उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस लिहाज से भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्षेत्र है और तमाम जो आधुनिक जो IT टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र है, उसमें इंडोनेशिया की ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो मिनरल्स और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौते हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के दोनों देशों में समझौते हुए हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी है, उसके बाद हेल्थ वर्क फोर्स को लेकर के, कोविड जैसी महामारियों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बात कही और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो ने भी कहा कि इंडोनेशिया भारत से बहुत कुछ सीखता है। प्रबोवो ने भारतीय सरकार की जो नीतियां हैं, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में या इन जनता की जो कल्याण के लिए जो नीतियां बनी है उस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। और ये इस बात से परिलक्षित होता है कि

0: भारत का इलेक्शन कमीशन और केपीयू जनरल इलेक्शंस कमीशन जो इंडोनेशिया का है, दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि चुनावों को कैसे अच्छे ढंग से संचालित किया जाए। साथ ही साथ नॉन फेरस मिनरल्स पे भी बात हुई है, मेटल आइटम्स पर बात हुई है। IFC IOR इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में जो हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो एक फ्यूजन सेंटर बना है गुड़गांव में, वहां पर एक इंडोनेशियन लायसन ऑफिसर की नियुक्ति होगी। और उसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर के सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक अपनी ब्रांच इंडोनेशिया में खोलेगा सिंघासरी में, और प्रम्बानान मंदिर जिसकी यात्रा भी प्रधानमंत्री ने की, उसके रिस्टोरेशन का काम भी भारत का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडोनेशियन अपने काउंटर पार्ट से मिलकर जो जकार्ता में जो ये मंदिर है उसके जीर्णोद्धार और पुनरोद्धार का काम भी करेंगे। तो इंडोनेशिया की यात्रा मुझे लगता है इन 20 MOUs और जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उससे परिलक्षित हुई है कि कितनी सफल ये यात्रा रही और कितनी प्रोडक्टिव ये यात्रा रही।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा कि आपने काफी डिटेल में हमारे सुनने वालों को बताया कि जो इंडोनेशिया की यात्रा है उसमें क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए और कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में एक फर्दर स्टेप है, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर, तो इस यात्रा से जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और जो महासागर विजन है उनको एक बहुत स्ट्रेंथ मिली है और उनको एक बढ़ावा मिला है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वालों के लिए आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि जो महासागर विजन है और भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको लेकर इसमें कैसे ये एक हम मानते हैं कि ये यात्रा एक फर्दर पॉजिटिव स्टेप की तरह सामने आया है।
0: एक्ट ईस्ट नीति को जब 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी तब ही ये बात कही गई थी कि एक्ट ईस्ट नीति एक प्रोएक्टिव नीति है दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जुड़ने के लिए। और उस समय ये बात कही गई कि हमारे 3 C's कल्चर, कॉमर्स और कनेक्टिविटी हमारे तमाम मित्र देशों और पड़ोसियों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज एक्ट ईस्ट नीति इस स्तर पर पहुंच गई है कि आज हम कल्चर, कनेक्टिविटी, कॉमर्स की तो बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ हम डिफेंस की बात कर रहे हैं, मैरिटाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम डायस्पोरा की बात कर रहे हैं। तो ये 4 जो डीज इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में आ गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहले से एक परिकल्पना रही है कि भारत की सीमाएं सिर्फ दक्षिण एशिया के देशों से या इंडियन सबकॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं उससे निर्धारित नहीं होती, भारत की विदेश नीति अपने जो ईस्टर्न फ्लैंक है, जो पूर्वी तरफ के देश हैं जिनके साथ हमारे सदियों से संबंध रहे हैं, उनके साथ भी भारत के उतने ही अच्छे संबंध होने चाहिए। जब म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की तो भी हमने देखा कि दोनों देशों के बीच में संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। तो इस एक्ट ईस्ट नीति में अब 40 वर्षों बाद जब एक भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचा और ये यात्रा पिछली साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन की विजिट के बाद हुई, मार्च 2025 की यात्रा के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा हुई और हमने देखा कि सिर्फ 2 मुलाकातों में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया और मैरिटाइम सिक्योरिटी भी एग्रीमेंट साइन किया। दोनों देशों के बीच में अप्रैल 2026 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है जिसको रेटिफाई इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा और ये रिकॉर्ड 9 महीनों के समय में इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया। तो ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है एक्ट ईस्ट की नीति में अब वो परिवर्तन आ रहे हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, वो परिवर्तन आ रहे हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों और हमारे रक्षा संबंधों और व्यापार के हितों से जुड़े हुए हैं। मैरिटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट और डिफेंस के जो तमाम एग्रीमेंट्स इन तीनों देशों की यात्रा में साइन हुए उससे पता चलता है। आपने सवाल पूछा महासागर नीति का, तीनों ही देशों के साथ भारत ने समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, आतंकवाद से निपटने, नेचुरल डिजास्टर से निपटने, इन तमाम क्षेत्रों में जो महासागर विजन का जो कोर कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसका मतलब यह है कि जो इस क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनकी प्रगति और उनके विकास के साथ साथ भारत का भी विकास हो और भारत की सुरक्षा है उसके साथ ही इन देशों की सुरक्षा भी जुड़ी हो। तो महासागर विजन में देखिए मैरिटाइम सिक्योरिटी भी आता है और आतंकवाद से लड़ना भी आता है, नेचुरल डिजास्टर सुनामी जैसी डिजास्टर से लड़ना भी आता है और जो मैरिटाइम पायरेसी है, गन रनिंग है, नार्कोटिक्स है, उनसे जूझना भी आता है। सीधे तौर पर महासागर विजन से ही ऐसा लगता है कि जो हमारे लिस्ट ऑफ MOUs इन तीनों यात्राओं में आए हैं वो उसी से एक तरह से प्रेरित है और ये दिखाता है कि कैसे महासागर विजन को अब धीरे धीरे उस संकल्पना को धीरे धीरे जमीनी तार्किक परिणत में लाया जा रहा है।
1: प्रोफेसर मिश्रा, अगर हम प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की बात करें जो जुलाई 8 से 11 तक हुई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विजिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत की और जैसा आपने भी बताया अभी कि मैरिटाइम डिफेंस कोलैबोरेशन पर बातचीत हुई, सिक्योरिटी पर बातचीत हुई और जो एक मेजर एग्रीमेंट जो साइन हुआ है वो एक सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का हुआ है जिससे ऑस्ट्रेलिया भारत को कमर्शियल यूरेनियम का

0: सप्लाई दे सकता है। तो ये जो एक यूरेनियम सप्लाई का जो एक एग्रीमेंट है, ये कितना महत्वपूर्ण है?
1: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर बातचीत 2008 में शुरू हुई, तब से लेकर के अगले 6 सालों में 2014 में सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट को साइन किया गया और उसके बाद से वो ऑस्ट्रेलिया की अपनी संसद में रेटिफिकेशन के प्रोसेस और तमाम उन दस्तावेजों की बार बार जांच परख के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा ये भी था, जैसा आपने कहा कि दोनों देशों के बीच में भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि ट्रस्ट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है दो देशों के बीच में कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में। आज जब ऑस्ट्रेलिया मलाबार एक्सरसाइज में भारत के साथ है, जिसमें जापान और अमेरिका भी हैं, आज जब ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ क्वाड का एक सदस्य है 2017 के बाद, हमें याद है कि 2007 में जब क्वाड बन रहा था तो ऑस्ट्रेलिया को यही भरोसा नहीं था भारत पे, उसे लग रहा था कि क्वाड बनेगा तो पाकिस्तान और चीन का विरोध होगा और वो उसमें पड़ना नहीं चाहता। 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने खुद ये इच्छा व्यक्त की कि वो क्वाड में रहे और भारत के साथ मिलकर रक्षा और सुरक्षा मामलों में सहयोग करें। तो ये जो विश्वास की बात है वो आज भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को आगे बढ़ा रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया को पता है कि ये समय की जरूरत है। और इतने वर्षों में 1998 से लेकर 2026 तक भारत ने कभी भी अपने किसी परमाणु कार्यक्रम को न किसी देश के साथ साझा किया है, न उसका किसी गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। तो एनपीटी का सिग्नेटरी न होने के बावजूद भारत ने अपनी जो विश्वसनीयता है उसको स्थापित किया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के आगे बढ़ते हुए, सुधरते हुए और मजबूत होते हुए संबंधों के साथ साथ भारत की अपनी विश्वसनीयता भी परमाणु कार्यक्रम को लेकर के स्थापित हुई है और इस वजह से ये सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट अब 2026 में साइन हुआ और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा।
0: प्रोफेसर मिश्रा, आपने न्यूजीलैंड के बारे में भी हमारे सुनने वालों को विस्तार से बताया, जो भारत और न्यूजीलैंड का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में बताया, फिर हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, इंडोनेशिया की बात की है, महासागर की, और आपने मेंशन भी किया कि क्वाड का भी हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया और भारत, जापान और अमेरिका के साथ। तो ये जब हम सब फैक्टर्स देखते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का रिश्ता इंडोनेशिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो तीन देश की जो यात्रा हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, ये हमारे जो रिश्ते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नीचे अगर हम रख के इन रिश्तों को देखें तो इनको कितना फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है, इस यात्रा से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं?
1: इन तीनों देशों की यात्रा से हमारे संबंधों में, इन तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को फॉरवर्ड मूवमेंट मिला है। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा, भारत के इंडोनेशिया के साथ संबंध हमेशा से अच्छे रहे। एक छोटा पीरियड था 1960 के दशक में जिसमें भारत और इंडोनेशिया उतने अच्छे दोस्त नहीं थे, लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत और इंडोनेशिया हमेशा से ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट मोटे तौर पर एक नीतियों का को फॉलो करते रहे हैं और इसलिए दोनों के संबंधों में जो अभी नया परिवर्तन आ रहा है वो एक तार्किक परिणति है उनकी अपनी विदेश नीतियों की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। क्वांटम जंप है भारत और इंडोनेशिया के बीच में रक्षा संबंधों को लेकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये क्वांटम लीप है। इन तीनों ही देशों के साथ हम जिस पायदान पर खड़े थे हम उससे कई पायदान ऊपर जा चुके हैं और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध भी एक जैसे नहीं थे। इंडोनेशिया हमारे बड़े नजदीकी था लेकिन आज वो हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ हम कई मिनी लैटरल फोरम्स पर काम कर रहे थे वो आज हमारे साथ यूरेनियम भी साझा करना चाहता और मैरिटाइम सिक्योरिटी में मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग भी करना चाहता। न्यूजीलैंड जिसने बहुत ही कम देश हैं जिनके साथ उसने रक्षा और सैन्य मामलों पर दोस्ताना संबंध रखे हैं वो भारत के साथ आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। तो इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में क्वालिटेटिव जंप हुआ है। अगर हम एफटीए की बात जोड़ें तो वो एक दिखाता है कि मल्टी डायमेंशनल क्वालिटेटिव जंप इन तीनों ही देशों के साथ संबंधों में दिख रहा है साफ तौर पर। आगे आने वाले समय में जब इन समझौतों को जमीनी हकीकत में उतारा जाएगा तब हमें ये देखने को मिलेगा कि कितना परिवर्तन इनसे एक आम भारतीय, एक आम इंडोनेशियन, ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंडर की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इसमें रक्षा सुरक्षा के साथ साथ व्यापार संबंधों, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, डायरेक्ट फ्लाइट्स की भी बात हो रही है खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ, लेकिन इंडोनेशिया के साथ भी हमारी डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे आने वाले दिनों में ये परिवर्तन दिखेंगे और भारतीय बाजारों में जब इन न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स दिखने शुरू होंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि एक्ट ईस्ट की नीति ने कितने व्यापक परिवर्तन भारत की विदेश नीति में, भारत की इकोनॉमी में और भारत के डोमेस्टिक मार्केट में दिखाए।
0: और हमने आज बातचीत की है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा को लेकर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को लेकर, और इन यात्राओं के अंत में

0: हमको जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं और भारत का जो रिश्ता इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बढ़ा है और भारत की जो नीति है, चाहे वो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, महासागर विजन है, उनको कितना फॉरवर्ड थ्रस्ट मिला है, आज हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातचीत समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा के प्रमुख निष्कर्षों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा और पत्रकार सिमरन सोडी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। डीजे प्रस्तुत है आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति।

0: श्रोताओं नमस्कार, डगर विकास की कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस अंक में हम जानेंगे केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जो हमारे छोटे और सीमांत किसान भाइयों से संबंधित है। जी हां साथियों, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूर्ण होने पर छोटे और सीमांत किसानों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना पर विस्तार से जानकारी देते हुए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र अशोकनगर, श्री भवानी शंकर गुप्ता।
1: भारत सरकार द्वारा निरंतर किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं, और इसमें जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसका अपना बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो किसानों की वृद्धावस्था के लिए चिंता करने वाली योजना है
0: जी,
1: और इस योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 सितंबर 2019 को झारखंड के रांची से लॉन्च किया गया था, और उसी दिन से हमारे किसान भाइयों के उसमें पंजीयन प्रारंभ हो गए थे। और ये किसानों के लिए, चूंकि किसान 60 साल की उम्र में जब आ जाता है तो उस समय उसके शारीरिक अंगों में शिथिलता के कारण वो खेती किसानी का कार्य नहीं कर पाता है, तो वृद्धावस्था में उसको आर्थिक सहारे के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी।
0: जी, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपने इस योजना के प्रारंभ होने के बारे में बता दिया है। गुप्ता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस योजना से जुड़ने के लिए किस आयु वर्ग के किसान भाई इस योजना से जुड़ सकते हैं?
1: हाँ, ये किसान भाइयों को अगर इस योजना में जुड़ना है तो इसके लिए जो उनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए
0: जी,
1: और 18 वर्ष का कोई कृषक है वो भी जुड़ सकता है, और अधिकतम उम्र 40 रखी गई, 40 वर्ष का किसान इसमें जुड़ सकता है। और उसके लिए सरकार के द्वारा अलग अलग प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जैसे 18 वर्ष का किसान है तो उसको 55 रुपए प्रीमियम देना और पड़ेगा प्रति माह, और यदि वो 25 वर्ष का है तो उसको 100 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा प्रति माह, यदि वो 30 साल का है तो लगभग उसको 155 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा, 40 वर्ष का है तो 200 रुपए प्रति माह प्रीमियम देना पड़ेगा। ये एक उदाहरण के लिए बताया है, वो जिस उम्र का है उसकी उसके प्रीमियम की गणना हो जाएगी और वो देगा। और कुल मिलाकर के इसमें ये है कि 100 रुपए अगर किसान दे रहा है तो 100 रुपए उसमें सरकार मिलाती है। ये जो योजना है, ये योजना इसलिए प्रारंभ की गई है कि एक तो ये बुढ़ापे में पेंशन किसानों को मिलने लगेगी, क्योंकि जैसे कर्मचारियों को पेंशन मिलती है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन मिलती है, उसी प्रकार से हमारे किसानों को भी एक पेंशन मिलने के लिए ये योजना है। दूसरा, स्वैच्छिक एवं अंशदायी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि हर किसान को जुड़ना ही है कि उसको इसके लिए इसमें भाग लेना है, उसकी इच्छा है तो उसमें वो अपना अंश दे सकता है। 100 रुपए अगर वो दे रहा है तो 100 रुपए सरकार उसमें मिलाएगी। और दूसरी, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से वो उनके लिए मतलब अच्छी है कि बुढ़ापे में उनके लिए, क्योंकि बीमारियां भी हो जाती हैं, उसकी जो आमदनी है वो भी कम हो जाती है किसान भाइयों की, तो एक छोटा सा सहारा उनके लिए इस योजना से हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि किसान भाइयों को अच्छे जल्दी से इसमें मतलब जुड़ना चाहिए, और प्रीमियम भी नाम मात्र का है, उसमें कोई ज्यादा मतलब प्रीमियम नहीं है।
0: गुप्ता जी, ये बात आपसे जानना चाहेंगे कि हमारा जो कृषक वर्ग है वो बहुत विशाल है, इसकी जो पात्रता क्या है, क्या सारे कृषक वर्ग इससे जुड़ सकते हैं या किस वर्ग के किसान बंधु इसका लाभ उठा सकते हैं?
1: इसके लिए मतलब सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि उसके पास में 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ जमीन होना चाहिए
0: जी,
1: और उसके ऊपर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर जमीन, मतलब 5 एकड़ जमीन उसके पास है तो वो अपना इसमें पंजीयन करा सकता है
0: जी,
1: और उम्र उसकी 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, इस प्रकार से अगर वो है तो वो उसका लाभ ले सकता है इसमें।
0: बिल्कुल, आपने इसकी पात्रता के बारे में बता दिया है और आयु के बारे में भी बता दिया है। गुप्ता जी, अगर हमारे किसान बंधु, कुछ कृषक भाई इस पात्रता में आते हैं, कहाँ से वो पंजीयन करा सकते हैं, किस तरह से इस योजना से जुड़ सकते हैं?
1: देखिए, इस योजना को पंजीयन कराने के लिए एक तो अपने कॉमन सर्विस सेंटर है
0: जी,
1: वहाँ पर जाके किसान भाई अपना आवेदन कर सकते हैं और उससे जुड़ जाएंगे। दूसरा, इसमें दो बैंक भी है, हमारी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ भी जाकर के हमारे किसान भाई आवेदन कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों को जो किसान पीएम किसान के अंदर जो धनराशि मिल रही है, जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत, तो उनको वहाँ जाकर के बस बताना है, तो उसमें से उनका प्रीमियम को माला आवेदन दे देंगे, तो उनको जो आता है ना पीएम किसान योजना के अंदर जो राशि आती है 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की
0: सम्मान निधि,
1: हाँ सम्मान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो वो वहाँ भी अपना आवेदन अगर बैंक में देते हैं उसमें से कर सकते हैं। इसकी योजना को LIC द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इस जो संचालन इसमें ऐसा है कि यदि किसी कारण से कोई किसान भाई के साथ में ऐसा ना हो और 60 वर्ष का होने के पहले ही उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो किसान द्वारा जमा की गई राशि है, सरकार द्वारा मिलाई गई राशि है, और उस पे जो बना हुआ ब्याज है, उस सब का भुगतान उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा
0: जी।
1: मतलब ये इसकी और खासियत है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रीमियम चला गया तो पता नहीं क्या होगा, तो मतलब अगर 60 साल के पहले खुदान खास्ता किसी किसान भाई के साथ में अनहोनी हो जाती है, तो वो किसान भाई को उसका जो जमा किया गया पैसा, मतलब सरकार द्वारा मिला गया पैसा, इसके बाद उसपे जो बैंक के द्वारा जो भी ब्याज बना है उस पैसे को मिला करके उसके नॉमिनी को लौटा दिया जाता है
0: जी।
1: और दूसरी एक और खासियत इसकी है कि जैसे किसान की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी इसमें पेंशन का प्रोविजन है
0: जी।
1: मतलब अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो जैसे 3,000 रुपए महीने किसान को मिलना है पेंशन, तो उसकी पत्नी को 1,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। तो ये योजना बहुत अच्छी है। तो अशोकनगर जिले में 2019-20 से लेके और अभी 2026-27 तक 955 किसानों ने इसमें मतलब अपना पंजीयन कराया
0: जी।
1: तो मतलब मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि इतनी अच्छी योजना है, 18 से 40 वर्ष के किसान इसमें भाग ले सकते हैं, छोटे से प्रीमियम की राशि है, सरकार द्वारा उस प्रीमियम में कुछ प्रतिपूर्ति भी की जा रही है, मतलब कुछ अपना मिलाया जा रहा है, तो ये करने की जरूरत है। दूसरी एक चीज और बताना चाहूंगा,
0: हाँ जी,
1: मतलब नॉमिनी जरूर करना चाहिए उसमें, मतलब जब आवेदन कर रहे हैं उस समय जो भी पत्नी या पुत्र वगैरह उसका नॉमिनेशन, नहीं तो क्या होता है कि कभी जैसे 60 साल की उम्र के बाद में किसान की मृत्यु हो जाती है,

0: पेंशन किसको दी जानी है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा 60 साल के पहले यदि किसी अनहोनी के कारण कुछ ऐसा हो जाता है तो उसकी जो प्रीमियम की राशि है, जो जमा की गई राशि प्लस सरकार द्वारा जमा की गई राशि प्लस ब्याज की राशि किसको लौटाई जाए, तो इसलिए नॉमिनेशन करना जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ी ही अच्छी सुविधाजनक योजना है और आपने काफी सारी इसके लाभ बेनिफिट्स बता भी दिए हैं। अब एक प्रश्न ये मन में उठ रहा है कि इस योजना से जुड़ने के लिए हमारे किसान भाइयों के पास कौन कौन से कागजात जरूरी होना चाहिए?
0: ये अपन ने बहुत सारी चर्चा तो कर ली, लेकिन क्या है कि किसान भाई कहेंगे करना क्या है
1: जी।
0: तो देखिए क्या बोलते हैं, इसके लिए एक तो किसान का खसरा खतौनी की नकल होना चाहिए, और इसके अलावा आधार कार्ड हो गया, उसका मोबाइल नंबर हो गया, और जो भी उसका जनधन खाता है या किसान का जो भी बैंक का खाता है वो खाता नंबर है, तो ये चीजें उसके लिए मतलब आवश्यक है। इन चीजों को लेकर के और वो आवेदन करता है तो उसका कचरा खतौनी की नकल हो गई, दूसरा हो गया आधार कार्ड, तीसरा हो गया उसकी बैंक पासबुक जो भी उसका जनधन खाता है या सामान्य खाता है बचत खाता है, और इसके अलावा मोबाइल नंबर, ये बस इतने चीजों की आवश्यकता है
1: जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी प्रकार से सरल शब्दों में आपने किसान भाइयों के लिए डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं और प्रीमियम्स पर बहुत विस्तार से आपने बातचीत की है कि किस एज में आप जुड़ेंगे तो क्या प्रीमियम रहेगा।
0: एक चीज और किसान भाइयों को मैं सलाह बताऊंगा, मतलब देना चाहूंगा कि जो प्रीमियम है उसको बीच में स्टॉप न करें, नहीं तो क्या होता है कि वो प्रीमियम जमा कर देंगे तो जो पॉलिसी है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। डिसकंटिन्यू हो जाएगी तो एक साल तक उसको चलाते हैं, उसके बाद में अगर प्रीमियम जमा करते हो तो उस पे जो भी मतलब पेनल्टीज है तो उसको जमा कर दोगे तो पुनः चालू हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे किसान भाई इसको प्रारंभ करें तो इसको पूरा करें, और अगर वो उसके माध्यम से चलते हैं आपका क्या बोलते हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो जो किसान सम्मान निधि है तो उसमें से तो अपने आप ही क्या बोलते हैं स्वतः उसमें से राशि कट जाया करेगी, वो भी कर सकते हैं। और एक चीज की सुविधा और दी है इसमें सरकार ने, मतलब किसान को अपना वो देखना स्टेटस, तो स्टेटस देखने के लिए manadhan.in करके वो उसपे अपना वो भी देख सकता है कि मेरी कितनी राशि जमा हो गई क्या हो गया, तो अपनी उसकी पॉलिसी का स्टेटस भी देख सकता है
1: जी।
0: तो मतलब ये भी उन्होंने शासन ने इसमें भारत सरकार ने किया है, तो किसान भाई इसको मतलब अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराए।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लघु एवं सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई एक सरकारी योजना है। 18 वर्ष से 40 वर्ष के सभी लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है वे इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। डगर विकास की कार्यक्रम के अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। अब दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार।

0: आलेख और वाचन श्रोता हरिशंकर से भरे का प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आकाशवाणी के गुना केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी गुना की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की। विषय था प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: डीजे प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। रात के ठीक 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चितपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं आशा भोसले, आर डी बर्मन और साथियों को फिल्म सनम तेरी कसम में। गीत है गुलशन बावरा का और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

और लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म शान में। गीत है आनंद बख्शी का और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

लीजिए आप सुनिए बसेरा फिल्म का गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीत है गुलजार का और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमेरिका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमेरिकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़वरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
2: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्य

0: कारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे ना तो स्वीकार करता है और ना ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1.25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह

0: ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। रात के ठीक 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का अंजना खेर की तरफ से नमस्कार। चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं अपने फरमाइशी कार्यक्रम। और कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म रॉकी से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत है राहुल देव बर्मन का। और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, अनम यसफ अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, रशीद वारसी, जुबेर अली खान। लेबाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानिक मानिकपुरी। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म शंकर हुसैन से। स्वर है लता मंगेशकर का, गीत है जान निसार अख्तर का, संगीत है खयाम का और फरमाइश है आप सभी की। झरझर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके सभी मित्रगण। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया फिल्म शर्मिली से। स्वर है लता मंगेशकर का, गीत है नीरज का, संगीत है एसडी बर्मन का और फरमाइश है आप सभी की। कोल्हापुर से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्वी चौहान माई इंदूरकर, अंकिता चौहान अनिकेत चौहान, केवले गांव पुणे से अंकिता कामले सदारपुरकर, विजय कामले सदारपुरकर, बेबी शौर्या श्रेयस कामले, कल्याण मुंबई से डॉक्टर सूरज सुरभे, नमिता सुरभे, प्रकाश सुरभे, घाटकोपर मुंबई से वैभव चौहान, आभीर चौहान, भीमराव चौहान और सुजाता चौहान। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: इस अंतराल के बाद आप सभी का हमारे इस फरमाइशी कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहेगी, और आज मैं आपके साथ हूं अंजना खेर। तो चलिए श्रोताओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म स्वामी से। आवाज है लता मंगेशकर की, गीत है अमित खन्ना का, संगीत है राजेश रोशन का और फरमाइश है आप सभी की। जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौशल, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर यह गीत।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म बुढ़ा मिल गया मैं। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है राहुल देव बर्मन का, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, झारखंड से एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा ने। इसी गीत को सुनना चाहा है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अनु गोस्वामी ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अंतिम गीत आप सबकी फरमाइश पर।

किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही अंजना खेर को अनुमति दीजिए कार्यक्रम मन चाहे गीत संपन्न करने की। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉइड पर उतारा था। यह फिल्म थी यहूदी।

0: विमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और विमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।
1: आज

जी इस बेरहमार से घायल बिमलदा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेदिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।

0: विमल दा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज के चक्कर काटने लगे, बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में विमल दा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने विमल दा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में विमल दा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए विमल दा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।
1: दुख के।

न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदेर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदेर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमा घर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमा घर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिंदी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रही। फिल्में थी अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक वाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की मां। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रुपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमल दा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमल दा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

0: भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डीसिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से। एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी। और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: गुरु तक तक तक तक तक न तक न गिन गिन रे, जग जग जग जग जग न जग

दो बीघा जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने दो बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

मेरे। लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया बिराज बहू का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

विमल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने विमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

नंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।

बिहार के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक। इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन बिमल दा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदा, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चम्बे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदय पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। बिमल दा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। बिमल दा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन यह फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को बिमल दा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। बिमल दा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी।

0: आप दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा। सदियों से, सदियों के सफर में तो

देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना।

कहना नहीं होता है, न ही कुछ सुनना जरूरी है। किसी बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता। सब कुछ होठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सब पुल है जो एहसास बनाते हैं, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती हैं, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है। चेहरों पर नकली मुस्कान का लेबल चिपकाए जीते रहते हैं लोग, एहसास नहीं होने देते कि उनका दिल टूटा है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

0: की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।
1: माझी

0: समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरु मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि होर्मुज जलडमरु मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जलडमरु मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरु मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।